24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलो कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं, लाई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा न रिश्तेदार है, न यहां तुम्हारा कोई मित्र है, न यहां तुम्हारा कोई शत्रु है। तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में भगवान नाम रूपी धन, पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया। काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करती हैं, हम जान नहीं पाते। ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम हो करके, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधाद से युक्त हो करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। इसलिए प्रार्थना है, किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है। नाम रूप लीला धाम चारों समान है। वो धामवासी तो निरंतर सच्चिदानंद के संग में है, धाम सच्चिदानंदमय है। धामवासी बिना नाम के ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का परमाणु ही ऐसा है। यहाँ की रजरानी की महिमा ऐसी कि उसके अंदर भागवती की स्मरण, कानों में भागवतिक शब्द, नेत्रों में महाभागवत, हरिपार्षद वैष्णव जनों के दर्शन। यहाँ तो सौभाग्य लुटता घूम रहा है, यहाँ तो कल्याण मारा घूम रहा है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो नाम धाम रूप लीला से विमुख होकर विषयों में रमण करते हैं, वो एक घड़ी हमारे प्रभु के लिए दे दे। फिर वो देखे उनका जीवन कैसा श्रृंगारित होता है। अभी उजड़ा हुआ जीवन है, उजाड़ दिया इन विकारों ने आपको। थोड़े दिन नाम जप कीजिए, फिर ऐसा अनर्थ निवृत्ति होकर रुचि होगी कि आपसे कसम दिलाई जाए कि अब आप नाम जप ना करना, तो भी आप नहीं, कसम का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। बिना नाम जप के आप जी नहीं सकते। ये नाम ऐसा अमृत है, ये ऐसा महाअमृत है कि जिसने चखा वो निहाल हो गया और दूसरों को निहाल करने वाला बन गया। अंतिम समय सुधर जाए ये खास बात है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी भूमिका बढ़नी चाहिए अध्यात्म की। आप खिलवाड़ में मत अपने जीवन को नष्ट कीजिए। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न मुद्रा में आप निश्चय करो मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं है। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक एक क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवान नाम भगवत स्वरूप मंत्र प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो। हमारी बाजी हार जाएगी अगर हम अंतर बना लेंगे,
यही बड़ी हानि होगी, यही बड़ी विपत्ति होगी, यही सबसे बड़ा चूक होगी जिसकी कई जन्मों में भी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक क्षण भी अंतर न पड़े, राधा राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारी जिभ्या पर नाम चलता रहे। अगर कहीं किसी का शरीर छूट रहा है और भगवत प्रेरणा से कोई भगवत नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है जो शरीर छोड़ने वाला है। कितनी बड़ी महिमा है, अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की, ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। भगवत पार्षद ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे उनके पास, हेतु की कृपालु श्री हरि उस पर रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, तो उस वैष्णव उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या अंतकाल में ऐसी कोई भयंकर भयावह स्थिति हो और वो अभी मूर्छा को प्राप्त नहीं हुआ, उसको ये याद आ जाए कि इस समय तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि ऐसी याद आ जाए उसको, प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसकी चिता लगाई जा रही हो उसे देख ले, या उसकी अस्थि राख आदि भी पड़ी हो उसको भी छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापातक युक्तावा, एक कोई जवानी शब्द नहीं, केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कलेवरम वा तदभस्म तद्धूमम, उसके शरीर को छू दे, मर गया है पर, या उसका धुआं देख करके, अच्छा चिता जलाई जा रही है, भगवत स्मरण करते हुए देख, उसका कल्याण हो गया। या तद भस्म, उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़ी है छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से ऐसे छू ले, या उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की भगवत प्रेममय वृत्ति का कैसा महत्व है, देख ले छू ले तो उस जीव को मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा। जब ऐसी महिमा नाम जापक की है तो आप सोचो वो नाम क्या आप नहीं जप सकते हैं। अरे ऐसा सौभाग्य मिला है, चूको मत, किसी की मत सुनो, राधा राधा राधा, बड़ा घाटा हो जाएगा यदि चूक गए, अन्य किसी साधन की तरफ दृष्टि मत डालो। कलिकाल में अन्य कोई साधना सिद्ध हो जाए बड़ा कठिन है। जैसे योग मार्ग है, इसकी नींव है ब्रह्मचर्य, कई कई घंटे आसनों पर सुदृढ़ भाव से बैठ करके चित्त वृत्ति को परमात्म स्वरूप मिला, बड़ा कठिन है। आहार संयम वातावरण ये सब
यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, तपस्या आदि के द्वारा बड़ा कठिन है। प्रकृति का थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार शरीर सहने की क्षमता नहीं रह गई, बहुत ही कमजोर शरीर हो रहे हैं, कैसे आप तपस्या कर सकते हैं? धर्म क्या है इसका परिचय ही भूल गए हैं, कैसे कोई भगवत मार्ग में जो अन्य साधन है उन पर चल सके? एक उपाय बचा है, चाहे जैसे हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नाम जप। इसके उदाहरण में प्रसंग चल रहा था अजामिल जी का, कि ना तो ब्रह्मचर्य रह गया, ना पवित्रता रह गई, ना धर्म रह गया, और अभक्ष पदार्थ खाते थे, मांस आदि, मदिरा आदि, घोर वैश्यागामी। कहीं भी कोई भी ऐसा अब नहीं रह गया था इनके पास कि जिससे इनको परम कल्याण की तो बात जाने दो, किसी तरह नरक से बचाया जा सके, कोई उपाय नहीं रह गया था। यही है भगवान की हेतु की कृपा, जब द्रवही दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। भगवान जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो संत संग प्रदान करते, संतों से अपनापन हो जाता है, ऐसा अपनापन कि वो फिर उनके बिना जी नहीं सकता, भगवत चर्चा के बिना जी नहीं सकता, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना नहीं जी सकता। बिछुरत एक प्राण हरि ले ही, अगर संतों से बिछुड़ना पड़े तो ऐसा कष्ट होना चाहिए मानो हमारे प्राण छूट रहे हैं, ये भगवत कृपा। बिना श्रद्धा के भी संत संग कल्याण कर देता है, कर दिया अजामिल का, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना अब जो हो, पुत्र मोह में नारायण पुकारा, भगवान श्री हरि के दिव्य पार्षद उसी क्षण प्रकट होकर के यम पाश से उन्हें मुक्त किया अजामिल को, यम दूतों को, तुम धर्म की वृत्ति को जानते हो, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं? पर यहां धर्म का लेश नहीं दिखाई दे रहा, तुम तो निरपराध को दंड दे रहे हो। पूरा प्रसंग आपने सुना, हरि पार्षदों ने भागवत धर्म का निरूपण किया, किसने कोटि कोटि जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, पुत्र के ब्याज से ही सही, पर इसने हमारे स्वामी श्री हरि के नारायण नाम का उच्चारण किया। अजामिल के हृदय में आया कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो इन महान दुर्लभ भगवत पार्षदों के दर्शन, यमपाश से मुक्ति, यदि मुझे कुछ भी समय दे दिया जाए तो मैं पूरे चित्त से नाम को जपूं, नाम मैं हो जाऊं, ऐसा प्रार्थना करना चाहते थे, पर बोलने का अवसर नहीं दिया भगवत पार्षदों ने, अंतर्धान हो गए। यद्यपि मैं इस जन्म में महापापी हूं, फिर भी मेरे ऊपर संतों की कृपा है, यह हेतु की कृपाल संत, अगर उन्होंने मुझे बालक का नाम नारायण रखने को न कहता, कहते तो हमारा आज सौभाग्य न होता, कहां मैं कुलटागामी अपवित्र, और कहां भगवान का सर्व पाप नाशक मनोमोहक नाम, ये तो केवल संत कृपा। हाय मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज, ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, पर मैं कृपा पात्र हो गया, तभी मेरी जिभ्या से ये नाम निकला, आज से मैं दृढ़ निश्चय करता हूं, ये संत संग का फल है। सबको ऐसा ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए, अब मेरा जितना भी समय है मन इंद्रियों के अधीन ना होकर प्राणों को वशीभूत करके मैं ऐसा भजन करूंगा कि एक क्षण भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। देखो निश्चय में ताकत है, निश्चय में करते करते ऐसा निश्चय होगा तो ऐसा भी होगा, अगर आज ही निश्चय तो ऐसा भी होगा, जैसा सोचना है वैसा तुम अभी अभी निश्चय करो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे आगे का जीवन होगा,
जैसा जीवन तुम चाहते हो सुखमय शांतिमय, वो केवल तुम्हारी सोच होगी, सोच से ही वो जीवन बनेगा। और जैसी सोच करनी अभी निश्चय करो। यदि भोगों का चिंतन, भोग भोगों की क्रियाएं, नाना प्रकार का छल कपट, तो दुर्गति अशांति क्लेश विषाद, क्या चाहिए तुम्हें? शांति सुख आनंद तो निश्चय करो। अजामिल जी निश्चय करते हैं, आप मेरे को जो समय मिलेगा मन और इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा। अब लो निशानी, अब नाम से जितनी श्वास है अब बहुत सावधानी पूर्वक नाम जप करते हुए व्यतीत करूंगा। ये बड़ी बात। अब ये वासनाएं मुझे फंसा नहीं सकती। क्या हो गया? निश्चय हो गया। तुम्हारा निश्चय ढुलमुल होता है, आज नहीं करूंगा, फिर वही जहां वेग आया फिर उसी में प्राण निकल जाए, नहीं आज्ञा के विपरीत कदम नहीं, अभी महात्मा बन जाओगे। महात्मा आंतरिक स्थिति होती है। भगवान की इस माया ने मुझ अधम को कैसा फंसा लिया, बहुत ही नाच नचाया, अब नहीं नचा पाएगी। क्यों? क्योंकि आप समर्थ बल मिल गया नाम का, अब नहीं नचा पाएगी। प्रहलाद जी भगवान श्री नरसिंह देव से कहते हैं, मुझे आपकी माया से कोई भय नहीं, आपका चरणामृत और आपका नाम जाप करके, आपकी लीला कथा का गायन और श्रवण करके मैं इस दुस्तर माया को पार कर जाऊंगा। मुझे भय है तो इन प्राणियों को जो आपके नाम से आपकी लीला कथा से दूर हैं और माया प्रपंच में रत हैं, प्रभु इन पर कृपा कर दीजिए, अब मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी कृपा हम पर हो गई है, हमें नाम मिल गया है, आपका चरणामृत मिलता है, आपकी लीला कथा, इससे बढ़कर भगवत कृपा और क्या होगी। प्रभु कृपा चाहिए इन प्राणियों को। भगवान नाम का निरंतर रटन करते हुए अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नियम लो अव्यर्थ काल तुम कबहू काल वृथा नहीं जाए। राधा राधा, हर सेकंड सार्थक करो, कोई भी सेकंड खाली न जाने पावे, यही चतुरता है। राम ही भजें ते चतुर नर, बेईमानी करना, छल कपट करना, इंद्रियों की गुलामी करना, ये चतुरता नहीं है। चतुरता है जो तुम्हें समय मिला है उसमें नाम रूपी धन, एक बार बोला राधा, जमा हो गया श्री कृष्ण की बैंक में, कभी इसका विनाश नहीं हो सकता, और ये ब्याज सहित आपको मिलेगा, महासुख मिलेगा। सोचो, एक नाम त्रिलोक तारे, ऐसे नाम को हम क्यों छोड़ेंगे? हर समय नाम जप करेंगे, पता नहीं कौन सा अंतिम समय हो, क्योंकि अंतिम समय राधा नाम स्मरण हुआ तो हम पहुंच जाएंगे किशोरी जी के चरणों के समीप। अजामिल के चित्त में संसार से घोर वैराग्य हो गया। अब वो हरिद्वार गंगा के किनारे बैठ करके शांत भाव से अपने चित्त को भगवान के नाम में लगा दिया। भगवान नाम में लगाते ही मन शांत, बुद्धि शांत, निर्मल हो गई, क्योंकि निश्चय बड़े जोर का हो गया ना। ये निश्चय जोर का हुआ भगवत पार्षदों के दर्शन से। भगवान के एक नाम उच्चारण मात्र से उसकी कैसी महान सदगति हुई। सद्यो विमुक्तो भगवन नाम ग्रहण, देखो भगवान के नाम का उच्चारण का फल, नाम ने ही तो सब बात बना दी। वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, नाम जप करो अलग एकदम दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। देखो ना अजामिल को कैसे अनुभव हुआ स्वरूप का, नाम जप करो सब हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, अलग से करोगे तो विक्षेप हो जाएगा, क्योंकि सोहम और दासोहम का मार्ग ऐसे है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, और दासोहम में करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, आंख मूंद के दौड़ो वात्सल समुद्र हरी, तुम्हें ऐसे घेरे हुए गिर भी नहीं सकते।
वहां परत खगेश लगे नहीं बारा, ज्ञान के मार्ग में गिरने में देर नहीं लगती, और बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि तुम खुद ब्रह्म हो, बचो माया से। सत्यो भी मुक्त हो, देखो ना, एक नाम ने सत्यो माने तत्काल काम बना दिया। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम, आहा, मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नयत् पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। ये कर्म बंधनों का नाश कर देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है ध्यान से सुन ले, अपने श्री चरणों के स्पर्श से तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले प्रभु के जो जन हैं उनका संग तीर्थपाद श्री हरि के नाम से प्रीति कराता है। बिना संग के नाम में न परिचय होगा न प्रीति होगी, भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम। प्रभु से प्रार्थना करे, हे दीन बंधु दया करके नाम जापक संतों का संग दे दीजिए, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य दे दीजिए। जिसको संत संग मिल गया और नाम की महिमा सुनने को मिली, नाम जपने का उत्साह मिला, इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। नाम का आश्रय लेने से नयत पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। आहा, कोई भी कर्म दलदल से फंसा नहीं पाएगा। कर्म को दलदल की तरह कहा गया, जैसे दलदल में गिर जाए तो निकलना असंभव। नाम का आश्रय ले लो, दलदल ही नहीं रहेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंध सुखाही, करोहु विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत है न तैरने की जरूरत है, राधा सूख ही जाएगा, समुद्र ही सूख जाएगा। आराम से चलो, प्रभु के नाम के अतिरिक्त और ऐसी किसी साधना में सामर्थ्य नहीं है। बैठा लो हृदय में, दौड़ भाग बंद करो, चाहे और कोई साधना करो, रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं होगा। रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा, एकमात्र नाम ऐसा है कि रजोगुण तमोगुण का नाश करके सात्विक विकास करके त्रिगुणातीत स्थिति प्रदान कर दे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस स्वरूप का बोध करने के लिए बड़ी कठिन साधनाएं बताई गई, नाम जब से सहज में। कोई भी ऐसा, अभी पीछे एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा था कि कुंडलनी जागृत और सुषुम्ना नाड़ी का खुलना ये बहुत कठिन। गोपाल शास्त्र नाम में भी है, सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए मानो ब्रह्माकार वृत्ति, ये नाम से स्वाभाविक हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती। कुंडलनी के जागरण में जो बड़े बड़े विघ्न है, नाम जप को पता भी नहीं चलता, वो जागृत हो जाती है, सुषुम्ना मार्ग अपने आप संचरित हो जाता है। कुछ उसको इन सब विषयों को ना पढ़ने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। राधा राधा राधा, हर समय नाम जप, सब सिद्धियां सब वैभव भगवान की ही तो नाम में छुपा हुआ है। परिचित, ये जो हमने तुम्हें बताया ये गोपनीय है। गोपनीय शब्द इसलिए कहा कि सब नाम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रोज चर्चा होती क्या आपका निरंतर नाम जपने में भाव बना, नहीं। कोई बिरला ऐसा जिसके ये बात हृदय में बैठ जाए कि वो मुझे तो बहुत बड़ी बात मिल गई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई, छोटा न समझो नाम को, इतना बड़ा अंकुश होता है।
और विशाल मत वाले गजराज को घुटनों के बल लाने के लिए पर्याप्त है। एक अंकुश मार घुटने टेक देगा, जैसा कहेगा महावत वैसे चलना पड़ेगा। ये नाम अंकुश है।

जिभ्या पे चलेगा तो ऐसी बिजली पैदा होगी कि लोक लोकांतर में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। पर करो ना, नाम जप करो, जिभ्या से निरंतर नाम रटो, मारे घूम रहे दुख निवृत्ति के लिए, कुछ नहीं होना। यदि नाम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ओस चाटने से थोड़ा तो गीलापन लगा, लेकिन प्यास नहीं बुझने। ये प्रभु के चरणारविंद की शीतल धारा भक्ति की छोड़कर, नाम की छोड़ करके अन्य साधन रूपी ओस कण चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। राम राम राम जीह जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी ने महामहिम नाम की महिमा प्रकट की। कहीं भी भाग के जा तू कहां जाएगा, कोई तेरा दुख निवृत्ति का उपाय नहीं, क्योंकि जिससे तू दुख निवृत्ति चाहता वो भी काल से तो भयभीत ही है। जो काल को भयभीत कर दे वो है भगवान नाम। ले लो प्रभु के नाम का आश्रय, ले लो प्रभु के नाम का निरंतर जप करो। जो पुरुष श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ये बात सुने और इसे जीवन में उतारे, तो चाहे जितने पातक हो गए उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। ये नाम ही समस्त पातकों का नाश करके भगवत प्राप्ति

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: जिस वक्त आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: खुश कैसे रहते हैं? क्या सक्सेस से खुश रहते हैं? बहुत सक्सेसफुल लोगों को आपने देखा होगा, जानते होंगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, क्या वो बहुत खुश है? पूरी तरह से अंदर से खुशी से भरे, झूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लाइफ के एक मोमेंट को मजे से जी रहे हैं, या उनकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं? जबकि आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखोगे जो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, वो बहुत बेटर हैं उनसे जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। जैसे किसी कंपनी में जो जितना ऊपर बैठा है उसके ऊपर उतना ही प्रेशर भी है, उतनी ही टेंशन भी है।
2: सक्सेस इज नॉट
1: हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज सक्सेस। बट क्या हमको पता है कि खुश कैसे रहते हैं? कैन वी बी हैप्पी बाय प्रैक्टिस? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना नहीं, डोंट से यस और नो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं इन्होंने कहा कि भाई प्रैक्टिस से हम खुश हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस से खुश नहीं हो सकते, तो आप मेरी साइड ले रहे हो, इनकी नहीं ले रहे हो। डोंट डू दैट। आप समझ रहे हो ना, हम ऐसे ही करते हैं ना अपने माइंड में, वी से यस और नो, बट सेइंग यस और नो इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट द थिंग इज कि हमको एक्चुअल में देखना है कि हम खुश कैसे हो रहे हैं, या ये पूरी दुनिया खुश कैसे हो रही है। इसको इस तरह से कहूं कि दिस डिजायर इज चॉइसलेस, यहां पर कोई चॉइस नहीं है। जैसे होता है ना कि आपको लाल रंग की शर्ट अच्छी लगती है या हरी रंग की, तो वहां पर चॉइस है ना। क्या यहां पर चॉइस है कि आपको खुशी अच्छी लगती है या दुख अच्छा लगता है, मजा अच्छा लगता है या दर्द अच्छा लगता है? कोई चॉइस है क्या यहां पे? कोई कहेगा मुझे दर्द अच्छा लगता है? नहीं, चॉइस नहीं है, दुख अच्छा नहीं लगता है, है ना। तो दिस इज चॉइसलेस। तो दैट मींस कि पूरी दुनिया, हर इंसान इंक्लूडिंग यू एंड मी, अपने इसी डिजायर को पूरा करने में लगा हुआ है अलग अलग तरीके से, खुश होने का डिजायर। तो हमको सिर्फ इतना सा समझना है कि पूरी दुनिया कैसे एक्ट कर रही है, और क्या कोई दूसरा भी रास्ता है? मैं कहता हूं हाँ है, ठीक है, जो इस दुनिया की सोच से परे है। वहां तक चलने के लिए पहले आपको अपनी सोच को छोड़ना होगा, क्योंकि मैं अगर कह रहा हूं सोच से परे है, तो वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल में वो सोच से परे है। आई एम 100% श्योर आप में से कोई भी आज से पहले किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। तो अब अगर आपको उस पॉइंट को ग्रैस्प करना है पूरी तरह से, तो जो भी कुछ माइंड में है सबको छोड़ना होगा कुछ देर के लिए। क्या आप तैयार हो जो भी कुछ है माइंड में उसको छोड़ने के लिए? फिर उसके बाद देख लेना कि हो सकता है जो मैं कह रहा हूं बकवास हो, तो उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाल देना, और जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो वैसे करते रहना, जैसे पूरी दुनिया कर रही है खुश होने की स्ट्रगल। और क्या है बचपन से आज तक अगर देखा जाए, आपकी लाइफ को अगर समअप किया जाए, और क्या है खुश होने की स्ट्रगल? वी नीड डिजायरेबल थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस रिलेटेड टू समथिंग। वो चीज है, उसका थॉट हमको खुशी नहीं देता है। डिजायरेबल थॉट क्या है? कि ये चीज मेरी होनी चाहिए, वो हमको खुशी देता है। कोई पर्सन है, उसके साथ में हमारा रिलेशन है, समवन। जब रिलेशन अच्छा होता है तो हमको खुशी मिलती है। ये रिलेशन अच्छा एक्चुअल में क्या है? क्या एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे कोई रिलेशन होता है या माइंड के लेवल पे होता है? हाँ, इसको दोनों चीजों को अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इसमें सारे थॉट्स आ गए। अभी जहां हम खुशी ढूंढ रहे हैं वो थॉट्स में ढूंढ रहे हैं। मैं थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इसको भी क्लब करके एक वर्ड दे रहा हूं, थॉट्स। एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हमारा किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं होता है। आपका पैसे से क्या रिलेशन है एक्चुअल में, एट अ फिजिकल लेवल? क्या आप उससे जुड़े हुए हो किसी चीज के साथ में? मतलब जैसे जमीन है, तो एक्चुअल में आपको जमीन से क्या रिलेशन है? क्या वो जमीन आपकी है? इस सच को देख पा रहे हो? पेपर पे आपकी है, आपके माइंड में आपकी है, क्या एक्चुअल में आपकी है? ना आपकी है, ना आपके बाप की है। ये बात समझ आ रही है? ये बात किसी की नहीं है। वो जमीन किसकी है? नेचर की है। मान लो तो किसी पार्क में भी आप जाकर के बैठ सकते हो, ये पार्क मेरा है कि नहीं? तो पार्क आपका हो गया अगर एक्चुअल में आपने मान लिया तो। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ। और ये मान लिया कि मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पास में अपना घर नहीं है, तो अब गरीब हो। तो ये सारा खेल माइंड के लेवल पे चल रहा है, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। मान ही तो रहे हो, ये आसमान मेरा है, ये तारे मेरे हैं, ये बादल मेरा है, ये बारिश मेरी है, ये नेचर किसके लिए है? इसका मीनिंग क्या है? अगर इसको कोई देखने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, इस नेचर की क्या वैल्यू है? अगर यहां पर कोई है ही नहीं, इस प्लैनेट पे अगर लाइफ नहीं है, तो इस सबका मतलब क्या है? तो मानने के ऊपर है ना कि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, लेकिन हम ऐसे कभी सोचते नहीं है। हम क्या करते हैं,
3: छोटी सोच, छोटा, बस मैं ये कपड़े मेरे, ये छोटी अलमारी मेरी, ये छोटा सा ये साइकिल मेरी, ये स्कूटर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, बस वहीं पर उलझे रह जाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं,
1: है कि नहीं? तो हमारी दौड़ क्या है, इसको आराम से समझना, बिकॉज है ना, कहीं भी ये मत समझ लेना कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसे की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना, मतलब वहां से कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपको मिलता है, कंफर्ट की वैल्यू है, बट उसका खुशी से कनेक्शन नहीं है, खुशी का कनेक्शन किसी और चीज से है, राइट अंडरस्टैंडिंग से है। हम कैसे खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हम कहीं जुड़ते नहीं हैं, ना चीजों के साथ में, ना लोगों के साथ में, बस अपने माइंड में जुड़ जाते हैं। जैसे आप किसी पर्सन के साथ में जुड़ गए तो जुड़ने में खुशी नहीं मिलती है, जुड़ने के बाद में जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ओन लिमिटेड डिजायर्स, जब वो हो रहा होता है तब हम खुश होते हैं, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, एकदम से मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, सब बेकार है, घर भी बेकार है, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, मन करता है नहीं करता है, बहुत गुस्सा आ जाता है अंदर से, मतलब जितना मजा आया था उतना उससे बहुत ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि इस थॉट में मजा आता है, नो डाउट देयर इज प्लेजर इन दिस थॉट, जब हमारे अकॉर्डिंग कुछ हो रहा होता है तो मजा आता है, आता है नहीं आता है कि कोई पर्सन हमारे अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, मजा आता है, जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, मजा आता है, जैसे ही हमारे अकॉर्डिंग कुछ होना बंद हो जाता है, आप एक बिजनेस कर रहे हो जब तक आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही आपके अकॉर्डिंग होना बंद हो जाता है, आपके इंप्लॉइज ने कुछ ऐसा किया जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर धीरे धीरे आप देखोगे उसके अंदर कड़वाहट आने लग जाएगी, जिसके अंदर जितनी ज्यादा कड़वाहट आ गई समझ जाओ खुशी से उतना ही दूर है, जी रहा है, जिंदा लाश है। ये एक प्रॉब्लम है थॉट के लेवल पे खुश होने में। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपने इस थॉट को पकड़ा है जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो कि मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूं, जिस इंसान को मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं, इसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, तो क्या इसका अपोजिट थॉट यानी कि ये रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है, वो उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, उसका पीछा नहीं कर रहा है, तो क्या जहां पर आप सुखी हो रहे हो उसके पीछे दुख नहीं है, या ये कह लो कि ये एक सिक्का है, उसका हेड है सुख, मतलब आप एक रिलेशनशिप की इस साइड को देख करके खुश हो रहे हो कि अभी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूं, हमारी शादी हो गई, जिसके साथ मैं रिलेशन में रहना चाहती थी या चाहता था, और हमारा रिलेशन आज बहुत अच्छा चल रहा है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक है आज आप रिलेशनशिप में हो, तो क्या इसके पीछे दूसरा सिक्के का ये पहलू नहीं है कि रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है, वो मर सकता है इंसान, तो क्या डर इसके पीछे नहीं चल रहा, तो जहां डर होता है जिस थॉट के पीछे, हम इग्नोर कर सकते हैं, हम शो ऐसे कर सकते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं कोई डर नहीं है, पर जितना ज्यादा आपको खुशी मिल रही होती है उस इंसान के साथ में, ये सोच करके तो आप खुश हो रहे हो ना कि हाँ हो गया, मतलब यही, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट टू हैपन, तो जितना हम खुश हो रहे होते हैं उतना ही दुख भी होगा या नहीं होगा, और अगर उस मोमेंट में हम खुशी ना हो तो दुख भी नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि अभी खुशी ना हो तो जिंदा लाश बन जाओगे, नहीं, समझ गए ना, तो ये सब जो हो रहा है वो सब तो वैसा ही होगा जैसा हो रहा है, बस कुछ ऐसा हो सकता है आपको समझ आ जाए जिससे सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। दूसरा क्या होता है, आज सब कुछ बहुत अच्छा है मेरी लाइफ में, वो बंदा वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, वो जो लड़की है वो कर रही है, मैं बहुत खुश हूं, अगले दिन मैं घर में आया मैंने देखा वो चीख चिल्ला रहे हैं मैं दुखी हूं, तो जिसको आप खुशी कह रहे हो वहां पर तो डर ही डर है, खुशी तो मुझे कहीं नजर आ नहीं रही है, बहुत ही टेम्पररी है, और हम खुश कैसे होते हैं, कुछ प्लेजर्स में इंडल्ज होकर के, लेकिन वो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं अपने बहुत सारे सेशन में टच कर चुका हूं कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है, एडिक्ट हो जाते हैं हम, दोज आर मोर लाइक एस्केप्स, जब लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो हम एस्केप्स ढूंढते हैं, भागते हैं उस सिचुएशन से। मन नहीं करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भागो, तो ये एस्केप्स है। इस पर्सन के साथ में प्रॉब्लम है तो यहां से भागो, उस पर्सन के पास जाओ। तो वी आर ऑलवेज रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर। और इस भागने के चक्कर में क्या होता है, जो हो रहा होता है एक्चुअल में उसको हम कभी देखते ही नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है। हम तो भाग रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज की तरफ, एक चीज को बहुत एफर्ट करके अचीव किया, उसके बाद में वो चीज या तो पुरानी हो गई या उससे बोर हो गए या किसी और के पास में उससे बेटर कोई चीज आ गई, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज जिससे रिलेटेड आपके माइंड में बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, जब 10 लोगों के बीच में आप खड़े होते हो तो वो आपको गरीब की तरह देखते हैं, ये क्या किया है तूने, होता है नहीं होता है हा? और वो जिसकी वजह से आपके अंदर बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैं तो पता नहीं क्या बन गया हूं किसी और को देख करके, हो सकता है जिसको देख करके ऐसे थॉट्स आ रहे थे वो आपसे और आगे निकल गया, अब और परेशान हो रहे हो। तो ये तरीका है जी दुनिया के पास में खुश होने का, यानी क्या जो मैं चाहता हूं वो हो जाए। कुछ भी हम अपने माइंड में कोई आइडिया बना लेते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और हम चाहते हैं कि वो हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं, बट हम कभी ये नहीं समझते वहां पर क्या फ्लॉ है। जैसे स्पेशली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के, अगर आपने उनको ऑब्जर्व किया हो, वहां पर क्या हो रहा है आजकल, ये प्लास्टिक सर्जरी बहुत चल रही है, पता है आप लोगों को आइडिया है? हाँ, आप देखते होगे, मतलब कभी नोट किया हो कि कभी लिप्स बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, नाक बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, शक्ल पहले अच्छी थी अब और बुरी हो जाती है। तो समझो क्या हुआ, मतलब कितना फ्रेजाइल है कि शीशे में आपने अपनी शक्ल देखी और देख के कहा कि मैं, पूरी दुनिया आपको कह रही है कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आपने देखा कि नहीं, मेरी जो नाक है ना वो लंबी है। तो अब आपको क्या चाहिए, छोटी नाक चाहिए, नाक को आप गए किसी डॉक्टर के पास में जाके प्लास्टिक सर्जरी कराई, नाक छोटी करा ली, थॉट्स ही बदल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और खुश हो गए देखते ही, वाह क्या किया है तुमने। लेकिन जैसे ही आपकी अगली मूवी आई तो ऑडियंस ने देख करके क्या, ये क्या फुद्दू बनती है, ये क्या कर दिया तुमने, पहले बेटर थी तुम्हारी शक्ल, अब बेटर नहीं है। तो वो थॉट बदल गया ना या नहीं बदला? वो थॉट जिसकी वजह से वो खुश हो रही थी, जिसकी वजह से पता नहीं कितना अपना काट पीट करवाई, ये करवाई वो करवाई, और करके शीशे में देखा, आ हा हा मजा आ गया, वो मजा कहां गया, जैसे चार लोगों ने आकर के बोला ये क्या है, पहले ही सही था, अब वहां भी नहीं जा सकते, नाक लंबी कैसे होगी, छोटी तो हो जाती है, समझ आता है। जिंदगी भर के लिए फंस गई ना वो, क्यों, क्योंकि वो खुशी कहां ढूंढ रही है,
4: लोगों के कमेंट्स,
1: या तो अपने ही एक आइडिया में, अपने ही माइंड में एक थॉट क्रिएट किया कि नाक लंबी मतलब बुरी, छोटी मतलब अच्छी, रंग काला मतलब बुरा, गोरा मतलब अच्छा, और फिर उसके पीछे भाग रहे हैं। कभी देखा ऐसे कुछ लोगों को, मतलब कुछ क्रीम व्रीम लगाई और उसके बाद में गोरे भी हो गए, लोगों ने कहा ये क्या भूत आ गया। होता है, क्योंकि रिएक्शन हो जाते हैं ना कई तरह के, कई स्पॉट्स पड़ जाते हैं और हो जाते हैं, हर चीज के अपने प्लस माइनस होते हैं ना, फिर इंसान कहते हैं ये क्या हो गया, पहले ही ठीक था मैं तो। तो सुंदरता कहां है, बाहर है अंदर है? एक्चुअल में असली सुंदरता किसको कहेंगे, कि जो है उसको बदलना, या जो भी है जैसा भी है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना, उसको रियल ब्यूटी कहेंगे अंदर से। बट ऐसी एक्चुअल में है, ऐसा हम कभी सोचते नहीं है, क्योंकि लोग हमारे आसपास में हमको रियलाइज कराने के लिए बैठे हैं। ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, मार्केटिंग की दुनिया है, वो आपको ये जताने के लिए बैठी है कि आप कितने भद्दे हो और वो कितने सही है। एब्स है, ये है, वो है, फेस मोटा है, ये है, पतला है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में भरा पड़ा है। तो क्या इस तरह से कभी भी आप खुश हो सकते हो? इम्पॉसिबल। यही दुनिया की कहानी है, दुखी है लोग अंदर से, आंखों में एक सुकून नहीं मिलेगा, डीप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फड़फड़ाए हुए हैं, भाग रहे हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब कोशिश कर रहे हैं खुश होने की। कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कहां जुड़ रहे हैं, थॉट के लेवल पे जुड़ रहे हैं, एक्चुअल में तो जुड़ते ही नहीं है। और चीजें, मोर पोजेशंस, वहां पर खुशी नहीं मिलती है। कुछ भी आप पोजेस करते हो किसी भी चीज को, कुछ देर के लिए खुशी मिलती है, उसके बाद में मिलनी बंद हो जाती है, वो ज्यादा कम लगने लग जाता है जो एक टाइम पे ज्यादा लगता था। आप लोगों का सबका एक्सपीरियंस है, बच्चे तो हो नहीं आप लोग, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, अभी भी ये नहीं आप कह सकते डीपली, अगर अपने आप से सच बोलो शीशे में देख करके, कि जो भी है जैसा भी है मेरे बाहर मेरे अंदर, मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बदलना है इस दुनिया में। सब कुछ रहता है रहे, जाता है चला जाए। जब ये नहीं कर सकते इसका मतलब डर में जी रहे हो ना। आई एम नॉट टू श्योर आपके लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा कोई और चीज मायने नहीं रखती। ये समझना कि भाई खुशी क्या है, खुश कैसे होते हैं, कुछ भी कर लो वो जो डिजायरेबल थॉट है वो बना नहीं रहता है। डिजायरेबल थॉट इज ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग और समवन और आरसेल्व्स, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समथिंग थिंग्स भी बदल रही है, उससे रिलेटेड थॉट्स भी बदल रहे हैं, सिचुएशंस भी बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, आप खुद बदल रहे हो। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट। सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके लिए हम भूखे हुए पड़े हैं। तो समझ जाओ जहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितनी ज्यादा बड़ी है, समझ जाओ लोग उतने ही परेशान हैं। आप कभी पहाड़ों पे अगर गए हो या ऐसी किसी जगह पर गए हो, किसी हिल स्टेशन पे, वहां जाकर के देखोगे जहां पे लोग पीसफुल है ना, अपनी लाइफ से खुश है, वहां बिना एंटरटेनमेंट के भी वो खुश है। दे डोंट नीड टू मच ऑफ एंटरटेनमेंट। जहां पर अंदर से जो जितना परेशान है वहां पर उतना ही चीजें चाहिए अपना ध्यान बटाने के लिए, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। मोबाइल, ये सब क्या हो रहा है मोबाइल के अंदर, ये सब हो रहा है। मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, टीवी सीरियल्स चाहिए, ये चाहिए, मतलब टिक करके बैठ नहीं सकते। और क्या किसी चीज पे डिपेंड हो जाना खुशी है, उसके एडिक्ट हो जाना ये खुशी है, या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाना? कि खुश रहने के लिए आपको कोई चीज नहीं चाहिए, कोई चीज मतलब कोई चीज नहीं चाहिए। कि अगर आने वाली आपकी पूरी लाइफ के लिए जो भी चीजें आपके पास में हैं वो सब आपके पास से छीन ली जाए, आपसे ले ली जाए, तब भी आप खुशी से झूम रहे हो। इंसान है तो उनके साथ में भी आप खुश हो, उनके बिना भी आप खुश हो। अब ये नहीं कि इसका मतलब ना लोग ये निकाल लेते हैं कि हाँ, अगर मैं इसीलिए ये बात क्लियर कर रहा हूं, फिर नहीं तो माइंड में क्या आएगा, मैं कहूंगा कि चाहे कोई नहीं भी है तब भी आप खुश हो, तो आप क्या कहोगे, हाँ बाढ़ में गई दुनिया। तो रिलेशन की और धज्जियां उड़ेंगी, तब उसको इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे। इंडिपेंडेंस किसे कहेंगे? देखो, एक आदमी है वो कहता है कि मैं दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, उसको इंडिपेंडेंस कहोगे? क्योंकि रहना उसको दुनिया के साथ ही है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भी चले जाओगे, किसी आश्रम में भी रहोगे, वहां भी तो लोग होंगे या नहीं होंगे? हाँ, तो रहना तो आपको लोगों के साथ ही है। तो एक आदमी कहता है कि नहीं, मैं इस दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, दुनिया बहुत बुरी है, ये है, वो भगोड़ा है, वो भाग रहा है। दूसरा है जो कहता है कि नहीं, मैं तो ना तभी खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ जब मेरे आसपास में चार पांच लोग हो, अकेले में मुझे बड़ा डर लगता है, इन सॉलिट्यूड मेरी हालत खराब हो जाती है, अजीब तरह के थॉट आ जाते हैं माइंड में। तो मुझे लोग चाहिए अपने आसपास में, कुछ लोग जिनके साथ में बड़बड़ कुछ ना कुछ चलता रहे, ताकि अंदर जो बड़बड़ हो रही है वो ना दिखे। दोनों को आप इंडिपेंडेंट कहोगे? जहां इंडिपेंडेंस नहीं है वहां पर खुशी नहीं है। इंडिपेंडेंस ही तो खुशी है, फ्रीडम ही तो खुशी है। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको अगर बांध दिया जाए, चाहे फिजिकल लेवल पे चाहे माइंड के लेवल पे, वो खुश कैसे हो सकता है? अपने अंदर झांक के देख रहे हो कि क्या हम बंधे हुए हैं, नहीं बंधे हुए हैं? अपनी तरह तरह की उम्मीदों से हम बंधे हुए हैं। उम्मीद है कि हाँ, अभी तक तो एज हो गई मान लो 30 साल, है ना, अभी तक तो वो नहीं हुआ, बहुत ट्राई कर लिया, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वो परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद 5 साल में हो जाएगी, 10 साल में हो जाएगी। अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल बाद हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा। तो एक उम्मीद में हम जी रहे हैं, ये उम्मीद ही पिंजरा है, इसमें आप बंधे हुए हो और हमको खुद को पता नहीं है। उम्मीद क्या, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए और क्या है? और ये इल्यूजन कि वो हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जो भी आप सोच रहे हो, अब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मतलब रियलिटी को मैं एज इट इज देख रहे हैं, सोच रहे हो ना ये वो ये। एक लॉटरी की टिकट भी अगर आपकी निकल जाए तो अभी सुनने में लगेगा कि हाँ, 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट निकल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ देर के लिए होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर हम किसी भी तरह के कोई भी थॉट पे डिपेंड ना हो खुश होने के लिए? ये बात ध्यान से सुन लेना, मतलब ये बहुत डीप है अगर इसको आप पकड़ पाओ तो। चीजों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, लोगों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, अपने जो आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में बनाए हुए हैं सुंदर के, बदसूरत के, उससे आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो। कुछ करा लेने से आप सुंदर नहीं हो जाते हो, बदसूरत नहीं हो जाते हो, सिर्फ अपने माइंड के लेवल पे वो चेंजेस चल रहे होते हैं। समझ गए या नहीं? रिलेशन कभी एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होता है, माइंड के लेवल पे कभी लगने लग जाता है सब कुछ परफेक्ट है, फिर लगने लग जाता है सब कुछ बेकार है ना, तो एक्चुअल में सब थॉट के लेवल पे हो रहा होता है, माइंड के लेवल पे हो रहा होता है, और वहां पे हम फ्लॉ देख रहे हैं क्लियर कट कि वो थॉट्स बदलते चले जा रहे हैं। तो अगर हम थॉट के थ्रू खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट में फीलिंग्स आ गया, इमोशंस आ गया, थॉट्स आ गए, सब कुछ आ गया, उसके थ्रू अगर हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट के लेवल पे हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। ये बात क्लियर है ना, मैं इसको रिपीट तो ना करूं ना। हाँ, क्योंकि थॉट का अपोजिट हमेशा तैयार रहता है, मेरा रिलेशन अच्छा है तो वो बुरा होने में एक ही एक सेकंड का फर्क है, मेरे पास ये है वो जाने में एक सेकंड का फर्क है, ये मिलने वाला है, मैं ये एफर्ट कर रहा हूं पिछले 5 साल से, बस अब मैं अपने गोल के पास पहुंच गया हूं, मिलने वाला है, वो फेलियर में एक सेकंड का फर्क है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ खराब होने में एक सेकंड का फर्क है, ठीक है ना। जैसे वो बदला, थॉट बदल गया, तो ऑल्टरनेट करता रहता है। तो एक तरीका है थॉट के लेवल पे खुश होने के, एक है बिना थॉट के खुश होने के, मतलब अपनी खुशी को थॉट से ना जोड़े। थॉट से किसको जोड़े? कोई काम करने को, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वो बैठे रहने से नहीं आएगा, खुशी से नहीं आएगा, खुशी से पेट नहीं भरेगा, खुशी से बच्चों के स्कूल की फीस नहीं आएगी, खुशी से गाड़ी नहीं आएगी, बसों में धक्के नहीं खाना पड़ेगा, गाड़ी आएगी, बढ़िया है, बुरा नहीं है। वो किससे आएगा? थॉट से आएगा, माइंड से आएगा, एक्शन से आएगा। एक्शन के लिए पहले सोचना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं बिना सोचे समझे एक्ट करने लग जाओगे। तो थॉट को हम यूज कर सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस को हम यूज कर सकते हैं पैसे के लिए, पैसे को हम यूज कर सकते हैं कंफर्ट के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए जो जरूरी है, ठीक है। खुशी के लिए क्या करें? ये नहीं हुआ, ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या हो जाएगा? इतना कुछ तो हो रहा है इस दुनिया में, बारिश हो रही है वो हमको नहीं दिखती है, लेकिन मेरा ये नाम हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो कितनी देर तक टिकेगा उससे रिलेटेड थॉट? क्योंकि उस टाइम पे कुछ बुरा भी हो रहा होगा, हर चीज का प्लस माइनस होता है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, सक्सेस फ्री में नहीं मिलती है। जब सक्सेस मिलेगी तो साथ में ऐसे भी लोग आकर के जुड़ जाएंगे आपके साथ में जो आपसे ज्यादा पावरफुल होंगे, और वो अपने मतलब के लिए आपको यूज कर रहे होंगे, आपको टॉर्चर कर रहे होंगे, तो वो तो मिल गया जो चाहिए था, वो वाला थॉट तो पूरा हो गया, लेकिन साथ में सफरिंग भी तो आ गई ना, वो वाले थॉट्स भी तो आ गए। हम ये चाहते हैं कि हमको ये तो मिल जाए लेकिन खोना ना पड़े, पाने के लिए खोना भी तो पड़ेगा, जब वो खोगे तो उससे रिलेटेड भी तो थॉट्स आएंगे, तो खुश कैसे होगे? तो अगर हिम्मत है तो इस सच को देख लो, अगर देख सकते हो तो, नहीं देखना आपकी चॉइस है, कि थॉट के लेवल पे खुश होना इम्पॉसिबल। तो अब क्या करें, कैसे खुश होएं? क्या कोई और रास्ता भी है खुश होने का? क्योंकि तो लोगों को तो यही नहीं पता है कि बिना थॉट के क्या होता है, थॉट क्या होता है। एक बात बताओ, आप यहां पर बैठे हो, अपनी सांस चलाने के लिए आपको सोचने की जरूरत है क्या? अपने आप चल रही है, देखने के लिए सोचने की जरूरत है क्या? जो दिख रहा है उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, उसको यूज करने के लिए सोचने की जरूरत है, देखने के लिए सोचने की जरूरत है, सुनने के लिए सोचने की जरूरत है, जो सुन रहे हो उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, सुनने के लिए सोचने की जरूरत है। जब काम करना है तो थॉट चाहिए, ऑफिस में थॉट चाहिए, वहां पे खाली नहीं बैठ सकते, पूरे दिन तो ऑफिस में नहीं रहते ना, घर पे होते हो, संडे का दिन भी मिलता है, बीच बीच में सुबह का टाइम मिलता है, रात का टाइम मिलता है, उस टाइम पे क्या कर सकते हो? खुश हो सकते हो। खुश कैसे होते हैं? कुछ करके खुशी होने वाली है, करके खुश होना मतलब थॉट के थ्रू खुश होना, विच इज इम्पॉसिबल, जो हम देख चुके हैं। तो कैसे खुश होगे बिना करे? सब कुछ अपने आप होता रहे, कुछ करने की जरूरत क्या है? जो हो रहा है वो कम है क्या? वी डोंट नीड थॉट टू बी हैप्पी। ये अगर इस दुनिया को समझ आ जाए तो कमाल हो जाए। अब आपको खुश रहना आ गया, अब इस खुशी को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अब आप थॉट को यूज कर सकते हो, थॉट आपको यूज नहीं करेगा। अभी आप थॉट के पीछे भाग रहे हो, फिर थॉट आपके पीछे भागेगा। बात समझ आई? आप अपने थॉट्स के पीछे ही तो भाग रहे हो, और कहां भाग रहे हो? सुबह से रात तक वो कर रहे हो जो करना पसंद नहीं है, वैसी जिंदगी जी रहे हो जो नहीं जीना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो नहीं कर रहे, क्यों? डर की वजह से। ये डर क्या है? थॉट है। कुछ अचीव करना चाहते हो जो पता है कि उसको अचीव करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा जिन लोगों ने अचीव कर लिया उनका ही कुछ नहीं हुआ, तो मेरा क्या खाक होगा? फिर भी भागे चले जा रहे हैं अंधों की तरह। तो आप किसके पीछे भाग रहे हो? अपनी ही तो एक सोच है जिसको पकड़ के बैठे हो, उसको सच करने में लगे हुए हो। तो जब हमारी उम्मीद टूट जाती है कि थॉट से खुशी तो नहीं मिल सकती जी, पैसा मिल सकता है, ये वो, ठीक है, तो थॉट को उसी के लिए यूज करो और पूरी पावर के साथ करो। अब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, कोई डर है ही नहीं। थॉट मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या हो जाएगा?
3: आई बात समझ नहीं आई?
1: कुछ भी हो जाए, ब्रेथ तो फिर भी चलेगी। और अगर इसके एक लेवल और आप डीप में जाओगे, जो आई एम नॉट टू श्योर के ब्रेथ नहीं भी चल रही होगी, ये बॉडी नहीं भी होगी, तब भी मैं हूं, मेरे होने के ऊपर इस सबका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसको एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, नहीं तो ये बिलीफ बन जाएगा। फिर आप कुछ इमेजिनेशंस बना लोगे, अच्छा मैं हूं, इसका मतलब यहां से कुछ निकलेगा, वो कहीं और जाएगा, किसी कुत्ते की बॉडी में जाएगा, बिल्ली की बॉडी में जाएगा, हाँ घूम जाओगे, वो सब नहीं। लेकिन इसको आप कैसे समझ सकते हो, मेरी इस बात को, कि मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, बकवास कर रहा हूं, कैसे वेरीफाई कर सकते हो? जब टिक करके बैठोगे एक जगह पर, जो है उसको देखोगे, उसको समझोगे, तभी तो हो सकता है ना, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। कब ये देख सकते हो कि अगर आप अपने घर की छत पे लेटे हुए हो और ऊपर बादलों की तरफ देख रहे हो, तो कब इस सच को आप एज इट इज देख सकते हो और समझ सकते हो कि सब कुछ मुझ में है?
5: Thoughtless mind is key of happiness.
1: Thoughtless mind is key for happiness, but what is thoughtless mind? वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? थॉट से ये देखना कि थॉट की क्या लिमिटेशन है, इसका मतलब आप थॉट से परे हो गए। नहीं तो अगर आप एक थॉटलेस स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक वेजिटेबल के जैसे बन गए। समझे? एक है आप समझ करके कि थॉट खुश होने के लिए काम नहीं आने वाला है, ये बात आपको गहराई से समझ आ गई है, इसलिए मैं थॉट को यूज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट इनफ, आई एम वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि थॉट यहां पर काम नहीं आने वाला है। थॉट मुझे डीप सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं दे सकता है, डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है, सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है, मुझे फियरलेस नहीं बना सकता, डर क्रिएट कर सकता है, बिकॉज थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन, थॉट कांट बी विदाउट अ रिलेशनशिप। आपके मेरे बीच में स्पेस है, इसके बारे में सोच के दिखाओ, करो कोशिश, मेरे बारे में सोच के दिखाओ, सोच सकते हो, किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जिसकी कोई फॉर्म ना हो। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? माइंड काम नहीं कर सकता है जी वहां पर। तो थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ दुख है। बट अगर हम समझ जाए इसको कैसे यूज करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर वहां से दुख भी मिला तो दैट इज ओके, उस दुख की वजह से आप दुखी नहीं होगे। दोनों में फर्क समझ आया? एक है आपकी लाइफ में दुख आना, एक है उसकी वजह से दुखी होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके सामने अगर आपका बच्चा बीमार है तो आपको दुख होगा, आप रोओगे, फूट फूट करके रोओगे, दुखी नहीं होगे। दुखी क्यों होना है? प्यार है, आउट ऑफ लव इट इज कमिंग आउट, आने दो, दुखी क्यों होना है? दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट कंप्लीटली एंड एब्सोल्यूटली। दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ से, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो आप क्या कोशिश करोगे, बैठने की कोशिश करोगे, बार बार कहोगे अब मेरे माइंड में थॉट्स क्यों आ रहे हैं? थॉट्स नहीं आने चाहिए, थॉट्स नहीं आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्या घोचू बनती है? थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, थॉट्स चाहे हो चाहे ना हो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। थॉट्स मुझ में आते हैं, मैं थॉट्स में थोड़ी आता हूं, डीप है, मतलब आई एम नॉट टू श्योर पकड़ पाओगे या नहीं। आप इतना ज्यादा थॉट्स में क्यों रहते हो? क्योंकि आपको उम्मीद है कि शायद फ्यूचर में कुछ होने वाला है। अगर ये उम्मीद ही टूट जाए तो कि फ्यूचर में मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है, मिलेगी तो अभी मिलेगी, आज मिलेगी, यही मिलेगी, कल कुछ होगा ही नहीं।
6: सर थॉट्स हमारे एक्शन को डायरेक्ट करते हैं ना सर, मतलब
1: ऑब्वियसली ये जो थॉट्स हैं, इसका कनेक्शन किससे है? थॉट्स का एक्शन से, इससे, उससे, सारी चीज, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। एक्शन का किससे कनेक्शन है? एक्शन का हैप्पीनेस से कनेक्शन है ना जी। आप कोई काम करोगे इसलिए कि वो काम करके मैं खुश हो जाऊंगा, तो आप एक एस्केप ढूंढ रहे हो। बट आपको समझ आ गया है कि बिना कुछ करे भी खुश कैसे रहते हैं। अब अगर आप कुछ कर रहे हो तो दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, नहीं तो आप गुलाम हो गए ना उस काम के। आप कहते हो ये काम करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है, आपके घर वाले कहेंगे मत करो ये काम। आप काम करोगे उसके लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा। काम कर रहे हो इसलिए कि चलो अगर मेरे को वो काम

0: सकता है ना, मेरे से ये चला जाएगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, गुलाम नहीं हो आप चीजों पे। सुप्रीम इंटेलिजेंस किसे कहेंगे? खुश रहने का तरीका क्या है? अगर सिंपल वे में बोला जाए, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो भी कुछ है मेरे पास में, वो सब चला भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतने सारे गुरुद्वारे हैं, वहां पर जाऊंगा, फर्स्ट क्लास लंगर मिलता है, बहुत टेस्टी होता है, घर के खाने से ज्यादा अच्छा होता है। खाना नहीं भी मिलेगा तो हाथ पैर है यार, जा करके पेड़ पौधे हैं, ये है वो है, तोड़ो पोड़ो खाओ, ये वो, खेतों में चले जाओ, जाके बोला आज थोड़ा काम करता हूँ, खाना खिला देगा, हाँ डीजे खिला दूंगा, क्या है। मतलब कहने का है कि पहले तो आपके अंदर से जो डिपेंडेबिलिटी है चीजों के ऊपर से वो निकल जाए, मतलब आपके जो खर्चे हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। दूसरी तरफ से आपको थॉट को यूज करना आ जाए, आपको ये पता हो कि आई हैव द पोटेंशियल टू अर्न एज मच एज आई वॉन्ट, एज मच एज आई कैन, एट द सेम टाइम आई हैव द कैपेसिटी टू लिव विदाउट मनी। फेडलेस हो गए ना। ये दो एक्सट्रीम होती हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग इस दुनिया में प्रॉब्लम क्या है, अपने पोटेंशियल पे काम नहीं करते, अपने आप को कैपेबल बनाने के ऊपर, कि भाई अपने आप को ऐसा बना दिया जाए कि अगर जीरो से कहीं तक भी पहुंचना है तो मेरे लिए खेल है, पैसा कमाना मेरे लिए खेल है, ऐसा किसी की आंखों में नजर नहीं आता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं जिनकी आंखों में डर नजर आता है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी भी आंखों में डर नजर आता है कि पिताजी का बिजनेस था, उन्होंने सेट करके दे दिया है, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, डरे हुए हैं। तो कैसा अपने आप को बना दो, एक तरफ से वो कैसे बनेगा, थॉट से बनेगा, और कैसे बनेगा, मतलब खुश रहेंगे तो नहीं बनने वाला कि आप बैठे हुए आराम से, हाँ ठीक है अपने आप सब हो जाएगा, नहीं होगा जी। थॉट से अपने आप को बेटर बनाया, अपने ऊपर काम किया, ये किया वो किया, वो किस लिए कर रहे हो आप, अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए। लेकिन ये तो हो गई एक साइड, इसको आप यूज कर रहे हो अपने आप को बेटर बनाने के लिए। दूसरी तरफ से क्या है, आपको समझ आ जाएगा अब मैं चाहे अपने आप को कितना भी बेटर बना लूं, कितना भी पैसा कमा लूं, कैसा भी कुछ कर लूं, इस सबसे भी कुछ होने वाला नहीं है। देख लिया दुनिया में बहुत तरह के लोग, देख लिए हर तरह के, देख लिए वो भी, देख लिए जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं, वो भी देख लिए जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो कहाँ है, इसको ध्यान से समझ लेना, ये समझने में है कि जो थॉट्स है इसमें कुछ नहीं पड़ा, ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बस इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए थॉट जरूरी है, आपका समझदार होना जरूरी है, नहीं तो लोग आपको बेच के खा जाएंगे, बस इतनी सी जरूरत है। इतना अगर हमको समझ आ जाए तो क्या होगा, दिन में मानो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जितना भी आपने काम किया उस वक्त तो पूरी तरह से थॉट को यूज किया अपने आप को कमाल का बनाने में, और बाकी टाइम क्या किया, थॉट को छोड़ छाड़ के बैठे हुए हो, थॉट की कोई जरूरत नहीं। अब जब आप देखोगे किसी को भी तो उस देखने में प्यार होगा और कुछ नहीं होगा।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

Angeli. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के। इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आरजे अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो चलिए बात कर लेते हैं वेदर अपडेट की। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 33 डिग्री रहने वाला है। इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 28 डिग्री है और विंड स्पीड आपको 6 मिलने वाली है। ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 72%। और देखो भाई, थंडर स्टॉर्म की आज वार्निंग है, यानी कि घर से अगर बाहर निकल रहे हैं ना तो अपने साथ अम्ब्रेला जरूर कैरी कीजिएगा, बिकॉज आपको मौसम का नहीं पता ना, इन दिनों कभी भी बदल देता है, यानी कभी आंधी तूफान और कभी एकदम चिल्लाती धूप। तो आज बारिश होने वाली है अच्छी खासी, तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: hate making love songs.
1: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
2: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
3: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

पता है कई बार ना बहुत सारी चीजों से डरते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग के अंदर अपना घर बनाकर बैठ जाती है। लेकिन आपको पता है, नथिंग टू फियर। किसी भी चीज से हम जितना डरेंगे ना, वो चीज हमें उतना ही डराएगी। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा डरता था, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया। दरअसल हुआ क्या, एक छोटा सा लड़का जो साइकिल चलाना सीख रहा था, हर बार वो गिर जाता और यही सोचता कि बस अब नहीं होगा मुझसे, अब मैं छोड़ देता हूँ। तभी उसके फादर साहब बस एक लाइन बोला करते थे, फियर को हैंडल करो वरना फियर तुम्हें हैंडल करेगा। तो बस एक दिन उसने डर के बावजूद फिर से कोशिश की, थोड़ा सा डगमगाया, थोड़ा नर्वस भी हुआ, पर इस बार वो गिरा नहीं। और बस उस दिन उस बच्चे को समझ आया, कॉन्फिडेंस का मतलब फियर का ना होना नहीं, फियर के बाद भी ट्राई करना होता है। सो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैसेज ऑफ द डे ये है, डर सबको लगता है लेकिन ग्रोथ कम्फर्ट जोन के बाहर ही होती है। स्मॉल करेज ही हमारी जिंदगी में एक बड़ा चेंज ला सकता है। सो माय डियर लिसनर्स, डर को दूर करने का बेस्ट वे है एक स्टेप आगे बढ़ना। तो आज ओवरथिंकिंग को थोड़ा साइड रखिए और उस काम की तरफ एक छोटा सा स्टेप लीजिए जिसे आप हमेशा से करने से डरते हो, और क्या पता आज की मोटिवेशन आपको वो काम करा दे। एंड फिर आपको पता लगेगा कि जिस डर से आप डर रहे थे ना, दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में घर करके बैठा था, उस डर का कोई वजूद नहीं था। तो आज ही इन सारी चीजों पर काम कीजिए और साथ ही सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: हाँ तो अर्ज किया है।
3: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहे हैं आप, सुनो तो
3: इरशाद।
2: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
3: तुम्हारे नंबर पे?
2: हाँ जी।
3: अच्छा,
2: और उन्होंने पूछा क्या?
3: क्या पूछा?
2: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
3: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
3: अच्छा,
2: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
3: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
2: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
3: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
2: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
3: बाय।
2: सुनो तो, कहाँ चली?
3: बाय बाय।
4: रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अगर प्लेनेट को क्लीन रखना चाहते हो ना तो भाई प्लास्टिक फ्री करना पड़ेगा प्लेनेट को। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। अब बात हो ही रही है प्लास्टिक की, तो सबसे पहले ये जानता है कि प्रॉब्लम क्या है प्लास्टिक में। एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है, साथ ही ओशन और वाइल्ड लाइफ को हार्म करता है। और पता है आपको, प्लास्टिक ना सालों साल प्लेनेट पर पड़ा रहता है, यानी कि खत्म ही नहीं हो सकता। तो आज से ही स्मॉल चेंजेस एंड बिग इम्पैक्ट की तरफ हम लोग काम करेंगे, यानी कि आज से ही क्लोथ बैग इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, रीयूजेबल बॉटल्स का यूज करना शुरू कर दीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक अवॉइड कीजिए और साथ ही रिसाइकल हैबिट अडॉप्ट कीजिए, सो दैट कि हम अपने अर्थ को ना सब कुछ हेल्दी दे सके। और अर्थ हमारी जरूरत है और उसकी केयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस ये चीज याद रखिएगा, एक स्मॉल इको फ्रेंडली हैबिट फ्यूचर को बेटर बना सकती है। और हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या सिर्फ पॉल्यूशन ही देंगे? नहीं ना, अगर हमें अपनी आने वाली जनरेशन को एक हेल्दी प्लेनेट देना है ना, तो भाई काम तो आज से करना पड़ेगा। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही इस हैबिट को अडॉप्ट कीजिए और अपने साथ साथ ना अर्थ का भी ख्याल रखिए। और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: Whoa, son!

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सचिन, ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा, रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ इस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो। जैसी
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

आजकल ना हम हर चीज में कन्वीनियंस ढूंढते हैं और फिर कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी प्राइवेसी को गवा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कन्वीनियंस के साथ प्राइवेसी का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजेंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो यहाँ पर ना साइबर क्राइम का एक और रीसेंट इंसिडेंट मैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ। एक रीसेंट इंसिडेंट में एक वुमेन ने एलिगेशन लगाया कि रेस्टोरेंट के QR बेस्ड ऑर्डरिंग सिस्टम में दिए गए पर्सनल डिटेल्स का मिसयूज हुआ है। सो अगर बात की जाए ना आखिर ये स्कैम कैसे हुआ और ये स्कैम का पार्ट कैसे है। सो यहाँ पर स्कैम कुछ इस तरह से हुआ, जब इस वुमेन ने फूड ऑर्डर करने के लिए उस रेस्टोरेंट का QR स्कैन किया, अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करी और उसके बाद में पता चला इन्हें कि रेस्टोरेंट के एक स्टाफ ने उनके डिटेल्स को यूज कर लिया है, व्हाट्सएप पर पर्सनल कॉन्टेक्ट किया, बातें करने लगा और यहाँ तक ये तक बताया कि उस लेडी के बारे में क्या क्या उस इंसान को पता है। सो अब आप देखें कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितनी पर्सनल है। तो यहाँ पर ना एक कंसर्न ये रेज हुआ कि कस्टमर डेटा प्राइवेसी का क्या, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिसयूज हो रही है, डिजिटल सेफ्टी और ट्रस्ट इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। सो माय डियर लिसनर्स, स्मार्ट तरीके से क्या करें अब। सो माय डियर लिसनर्स, आपके लिए आज एक मैं रिमाइंडर लेकर आया हूं। रिमाइंडर ये है, हर जगह अननेसेसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, प्राइवेसी पॉलिसीज और परमिशन चेक जरूर करें, सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें, सो दैट कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने से बचा सके। बिकॉज कन्वीनियंस अच्छी चीज है पर प्राइवेसी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो डिजिटल दुनिया में अवेयरनेस ही रियल प्रोटेक्शन है, इस चीज का ख्याल रखिए। और अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं ना तो जो चीज थोड़ी सी मेहनत से हो सकता है उसमें स्मार्ट वे मस्त ढूंढिएगा, क्योंकि स्कैम की अगर बात करें ना तो स्कैम वही होता है जहां हम शॉर्टकट लेते हैं। सो इस चीज का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रोगी नचले।
1: जहाँ सुबह की शुरुआत होती है फिटनेस और हेल्थ टिप्स के साथ, सुनना ना भूलिए मॉर्निंग एक्सप्रेस आरजे अंजलि के साथ।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जब ट्रैफिक हो टाइट और मौसम का मूड हो लाइट, वही मॉर्निंग एक्सप्रेस में मिलती है ट्रेंडिंग बाइट्स। सुनना ना भूले सुबह 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अगर बात कॉर्पोरेट वर्ल्ड की होना तो भाई यहाँ पर नेगोशिएशन करना बहुत टफ होता है, लेकिन अपनी इंडियन मॉम्स सुपर मॉमी तो भाई इनके सामने तो एचआर भी वीक पड़ गया। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस में मैं लेकर आ गई हूँ आज का सोशल स्यापा। सो स्यापा ये है कि अप्रेजल मीटिंग में हो गई सुपर मॉमी की एंट्री, यानी कि सोशल मीडिया पर ना इन दिनों एक फनी सटायर वायरल हो रहा है जिसमें गुरुग्राम के एक एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी अप्रेजल मीटिंग में अपनी मम्मी को बुलाया। सो भाई मम्मी ने यहाँ पर ऐसी नेगोशिएशन की ना कि सैलरी हाइक के साथ साथ ना प्रमोशन भी मिल रही है। तो भाई ये स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पर और वायरल स्टोरी का हाईलाइट सामने आया और हाईलाइट ये है, मेरा बेटा डेडलाइन की वजह से खाना नहीं खाता आपको पता है और आप उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। एचआर पॉलिसीज वर्सेस इंडियन मॉम इमोशंस बहुत जोर पर थे इस वीडियो के अंदर नजर आए। अप्रेजल मीटिंग बन गई सब्जी मंडी स्टाइल बार्गेनिंग। सो भाई यही होता है। तो भाई जितने भी आज मुझे ऑफिस वाले सुन रहे हैं, जितने भी मुझे बॉस सुन रहे हैं ना, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने एम्प्लॉय की मेहनत का पैसा तो उसे दीजिए ना, जो मेहनत आपको नहीं दिखती ना वो घर में मम्मी को दिख जाती है। सो ये स्टोरी कम्प्लीटली सटायर है, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट और फन के लिए। सो अगर इंडियन मॉम्स की बात करूँ ना तो वो सिर्फ घर नहीं संभालती, वो कॉर्पोरेट डील्स भी क्लोज कर सकती है और ऑनेस्टली भाई सुपर मॉमीज का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल पर होता है। तो माय डियर लिसनर्स, अगर आपका बॉस भी आपको दुखी कर रहा है ना तो आज अपनी मम्मी को लेकर जाइए ऑफिस में और बस बात करा दीजिए मम्मी से कि सैलरी हाइक भी हो जाएगी और आपके बॉस को थोड़ा सा आपसे डर भी लग जाएगा। वेल सो इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया एक म्यूजिक ब्रेक लेने का, तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महाराज में मॉर्निंग एक्सप्रेस शो। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: चुप्प निरतिले सारी यंगल एल्लाम डेंजर आनल्लो चुप्प

0: वेलकम बैक टू रेडियो मनानी, मैं हूँ आरजेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ इस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक। आप सभी को पता है इन दिनों मौसम ने कुछ इस तरह से अंगड़ाई ली है, कभी बारिश, कभी तूफान और कभी आंधी, ये सब एक साथ देखने को मिल जाता है। तो जो ये ट्रांजिशन वीक है इसका हमारी हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, यही जानने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट राधिका जी। सो आज इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। अगर इस ट्रांजिशन सीजन की बात की जाए तो सबसे पहले ये बताइए, ईटिंग हैबिट में क्या चेंज करना चाहिए, क्या अवॉइड करें और क्या इंक्लूड करें?
1: रेनी सीजन में मुझे लगता है जो अवॉइड करना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको रॉ सैलेड्स अवॉइड करने चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि रॉ सैलेड्स पे जो भी आपके इन्फेक्शन या जो भी बैक्टीरियाज है ना वो बहुत जल्दी स्टिक करता है। और रेनी सीजन बहुत ज्यादा वैसा होता है कि सब्जी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कितने ह्यूमिड में आ रही है, किस तरीके से वो लाई गई है ना, वो हमको नहीं पता होता। कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स ऑफ कोर्स कच्चे होते हैं, बट उसके अंदर भी आप सीजनल फ्रूट्स खाएं, जैसे बाहर से आते कि ये वहां का है, ये वहां का है, आई डोंट प्रेफर दैट। मुझे लगता है आप जिस रीजन में रह रहे हैं वहां के उस सीजन के जो फ्रूट्स होंगे वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होंगे। उसके बावजूद भी आपके सीजनल भी हैं, बट इट मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं, वो काफी देर पानी में रखे गए हैं, उसके ऊपर जो भी उसकी लेयरिंग हुई की वो हटाई गई है। दूसरा, कोशिश करो कि कच्ची चीजें तो ना ही खाओ, जो सैलेड्स जिन लोगों को हैबिट है, हेल्दी वर्जन में भी हम खाते हैं। सो मेक श्योर कि मॉनसून सीजन में आप उनको बॉइल्ड खाओ, स्टीम्ड खाओ, ताकि कोई भी चांसेस अगर वो बैक्टीरिया के रह गए हैं ना वो भी खत्म हो जाए। दूसरा, फ्राइड और जो आपके बाहर रोड साइड फूड होता है, मतलब देखो बहुत लोगों का बिजनेस है वो, देखो बहुत ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं, बट आपकी अपने शरीर के प्रति भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो स्ट्रीट फूड इस टाइम पे मुझे लगता है कि कम खाना चाहिए, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक आपको कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा उनको जिससे कि वो चीज मेंटेन हो रही है, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी हिट कर देता है। तो ये चीज आपको जरूर अवॉइड करनी चाहिए। और जो एड ऑन करने को मैं बोलूंगी, जैसे मैं एक सिरप की बात कर रही थी जो मैं अपने बच्चों को भी देती थी, इस सीजन में आप बच्चों को इवन अदरवाइज भी दे सकते हो, अपार्ट फ्रॉम जो आप बहुत गर्मी का सीजन है तब आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो या ट्वाइस अ वीक कर सकते हो। अदरवाइज इम्यूनिटी के लिए बड़ा हो, बूढ़ा हो या यंग हो, मुझे लगता है ये बेस्ट मेडिसिन है। आप कुछ तुलसी के पत्ते ले लो
0: जी,
1: उसको अच्छे से क्रश करके पानी में बॉयल होने दो, ठीक है? जैसे कि अगर आपको बच्चे को पानी देना है तो वो आप एक कप के हिसाब से उबलना रखोगे, आधे कप होने तक वो बॉयल होएगा, ताकि उसके जो अंदर के एसेंस है ना वो उस पानी में उतने मात्रा में चले जाए कि वो आपको असर करे। तुलसी के पत्ते आपने उबाल लिए, उसके साथ में आप उसमें काली मिर्च साबुत उबाल दो, पिसी हुई नहीं, वो बच्चों को गले में लग सकती है, बड़ों को भी। साबित काली मिर्च आपने उसके अंदर उबाल ली, उसके बाद आपने उसको छान के इसमें हल्का अदरक भी आप डाल सकते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी के लिए वेरी गुड इन फॉर योर स्टमक ऑल्सो। हल्का सा अदरक की तीन चीजें उबालनी है, तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च उबाल लिया, छानने के बाद उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर दो शहद, बच्चों के लिए इतना इज इनफ, ठीक है? अगर आपके बच्चों या आपको लेमन का टेस्ट डेवलप है तो वो अगर बहुत गर्म है तब तो लेमन नहीं डालना है, अगर आप वार्म वे में पी रहे हो हल्का सा लेमन आप डाल दो, आप देखना, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अमेजिंग रिजल्ट्स। और लोग सबसे ज्यादा गलती मुझे पता है कहाँ पे लगता है करते हैं, कि बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे देखो, इतनी चीजें पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, सेव भी कर लेंगे। मैं कहती हूँ 10 में से अगर आपने एक अच्छी चीज भी सुनी है ना और उसने एक को भी अप्लाई करा है, आई कैन गारंटी यू विद इन अ वीक और 10 डेज इट विल शो यू द डिफरेंस। बट मेक श्योर कि आप कर रहे हो, 100 रील्स आप सेव करते हो दिन में, उसके अंदर आपको लगता है मैं ये भी करूंगी, इतने बड़े गोल्स और इतनी सारी चीजें मत सेव। अगर दो चीज सुनी है ना, एटलीस्ट उसमें से एक ट्राई कर लो अपने सच्चे दिल से, एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। तो सुन के जाओ। हेलो, सुन के

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: राजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: ब्रॉडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, है ना,

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक स्पेशल गेस्ट योगा एक्सपर्ट राधिका जी, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक पर। सो राधिका जी, मैं आप ये जानना चाहती हूँ, हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करें ड्यूरिंग दिस सीजन, और क्या मॉनसून में भी उतना ही पानी पीना जरूरी है जितना कि समर्स में?
1: बिल्कुल, मॉनसून में उतना ही पानी पीना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ वही कि ह्यूमिडिटी है, चिपचिपापन है, हमें लगता है बॉडी में ऑलरेडी इतना पानी पानी हमें लग रहा होता है, स्टिकी लग रहा होता है, और उसके बाद हमें हैबिट ही नहीं। गर्मी में वही करें ना, हर किसी के पास बॉटल हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ रहेगा, बट इस वेदर में हमें लगता है कि हम इसको ना ये सोच लेते हैं हल्का ठंडा मौसम आ गया बेसिकली, तो हमारे को जरूरत नहीं लगती है उतना, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर ऑलरेडी बाहर जा रहा है, तभी आप स्टिकी फील कर रहे हो, राइट। आपकी स्किन में मिलियंस ऑफ पोर्स हैं जो आपकी बॉडी से पानी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब आप वो सोचो पूरी बॉडी में से हर पोर में से आपके स्वेटिंग के उसमें बाहर आ रहा है वाटर, राइट। आप उसको बैलेंस तो करोगे ना, क्योंकि आपका ही नेचुरली आपकी, और इसके अंदर सिर्फ आपकी बॉडी से पानी नहीं निकल रहा होता, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं आपकी बॉडी के वो भी निकलते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है, बट मेक श्योर कि आपकी हाइड्रेशन के फॉर्म अच्छे फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि आप उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस और ये चीजों को, यू नो दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस हेल्दी ड्रिंक्स जिसके अंदर कुछ चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं अपने बच्चों को और खुद जो लेती हूँ, जैसे अब हर कोई नारियल पानी कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है, बट हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता जी, राइट। तो आप छोटी चीजों से स्टार्ट, एप्पल ले लिया, एप्पल में नेचुरल मीठापन होता है, आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर दो पानी के साथ में, ठीक है, और उसको पूरा अच्छे से चर्न होने दो, आपको उसका फाइबर नहीं छानना है
0: जी,
1: ठीक है। आपने उसको नेचुरल अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड हो, ठीक है, उसके अंदर आप हल्का सा सॉल्ट और लेमन डाल के पियो, मैं कह रही हूँ इतना टेस्टी वो बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों वे में। तो ऐसे सोर्सेज वी हैव टू फाइंड आउट कि जिससे आप नेचुरल वे में बजाय किसी चीनी को ऐड करें आप अच्छी चीजों से हाइड्रेशन दो। लस्सी, छाछ, बेस्टेस्ट फॉर्म लाइट आपकी ब्लोटिंग को मैनेज करता है, आपके हर तरीके से, यू नो इट्स वेरी लाइक हेल्पफुल टू योर बॉडी। तो हेल्दी वर्जन मुझे लगता है आपके जो भी आपके लिक्विड फॉर्म के होंगे उनको ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी से मिनरल्स और वो सब निकल रहे हैं ना, तो उनको बैलेंस करना आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आपकी हाइड्रेशन में, सिर्फ पानी को हम हाइड्रेशन नहीं बोलते, राइट, आपके जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं जो आपके हाइड्रेशन को बैलेंस करते हैं। आप इसके अंदर प्लम, जो आपके सीजनल मॉनसून दिल्ली एनसीआर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है और सीजनल फ्रूट है, जामुन हो गया, आड़ू, जो नेचुरल फ्रूट इस टाइम के, वो सब ऐड ऑन कर दो। हाइड्रेशन में हमारे, जैसे हम वर्ड हाइड्रेशन बोलते हैं हमें लगता है हमें पानी पीना है, आप इसे हर वे में यूज कर सकते हो। आप इस मौसम में खाने के लिए, अगर मैं बोलूं हाइड्रेशन को बैलेंस करने के लिए, ड्राई सब्जियां ना खा के आप दलिया लो, पानी भी चला गया, वेजिटेबल्स चले गए, उसने आपकी बॉडी के तो मेंटेन कर दिया हाइड्रेशन को। तो आप इस तरीके से सब चीजों को ऐड ऑन करके अपनी हेल्थ को बेनिफिट कर सकते हैं।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे आज, बहुत कुछ है आज आपसे जानने के लिए, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात करते हो।
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

जी अंजलि। इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं, बहुत सारी अपडेट्स मैंने आज आपको दी हैं और मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। बेसिकली सुबह 7 बजे आई थी और 10 बजने वाले हैं, तो भाई कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑन योर रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
4: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
1: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी। 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में, जो इस वक्त 10:06 हो रहे हैं। और बात की जाए मौसम की, 30 डिग्री सेल्सियस शहर का तापमान बना हुआ है, जहाँ कल के दिन भी बारिश का मौसम बना रहा और आज भी बारिश के आसार है। बीच में धूप भी हो सकती है, लेकिन हाँ अब मौसम कुछ वक्त ऐसा ही रहने वाला है। सावन की शुरुआत हो रही है और बारिश ना हो ऐसा तो नहीं ही हो सकता था। बारिश ने मौसम शहर भर में गर्मी और उमस से राहत भी दी। वही बात की जाए एक्यूआई की, तो एक्यूआई जरूर आज 100+ होते नजर आए। 118 एक्यूआई जो कि अनहेल्दी शहर की हवा इस वक्त बनी हुई है, तो यहाँ भी कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो गाइडलाइंस हैं कि जहाँ पॉसिबिलिटीज है काबूल करें, गार्बेज ना जलाएं, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी डिपार्टमेंट्स अपने लेवल पर ज़रूर एक्यूआई कम करने के लिए अलग अलग कदम उठा ही रहा है।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि बारिश का सीजन है, मानसून है। मानसून में कुछ सावधानी बरतना बहुत जरूरी है ताकि हमारी सेहत अच्छी बनी रहे। जहां डॉक्टर्स का कहना है कि जो भी लोग डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो पुराने हृदय रोगी हैं, तो उन्हें दवा टाइम टू टाइम लेनी जिससे कि कोई भी दिक्कत ना आए। और बच्चे और बुजुर्गों के सेहत के मामले में मौसम से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह डेंगू मलेरिया के कुछ केसेस देखने को मिलते हैं, तो आपको ये ही करना है कि कहीं भी टायर में, बाल्टी में, टब में, पार्क्स में, छत पे, कुछ भी ऐसी जगहों पे जो पानी भरा हुआ उनको पानी ना भरने दे, सामान हटा दे, पानी खाली कर दे, जिससे कि डेंगू मलेरिया के मच्छर वहाँ पनप ना पाए। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे कि पानी खाली होगा तो लार्वा नहीं पनपेगा, लार्वा नहीं पनपेगा तो हमें डेंगू मलेरिया कुछ भी नहीं कह पाएगा। तो एक सबसे ईजी तरीका यही है। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हैं लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं फरीदाबाद की गलियारों से। जैसे कि आप सबको पता है कि आज ना साइबर फ्रॉड्स होते नजर आते हैं, लेकिन साइबर फ्रॉड्स के साथ साथ आजकल बहुत किस्म से लोग एक दूसरे के साथ फ्रॉड करते नजर आ रहे हैं। जहाँ बात की जाए तो कभी फॉरेन कंट्रीज में जॉब लगवाने के नाम पर यानी कि रिक्रूटमेंट के नाम पर भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं। हाल फिलहाल फरीदाबाद शहर में कुछ सेक्टर 19 में ऐसा ही देखने को मिला कि एक शख्स ने किसी को कहा कि हम आपकी फॉरेन कंट्री में जॉब लगवा देंगे, जहाँ पे आपको जो अमाउंट लगना है, अमाउंट फीस ली, वीज़ा फीस, ये सब हर चीज़ें ली, और उन्हें कहा कि आप कहाँ जॉब परमिट जो है ये बनवा दिए, आप वहाँ चले जाइए, टिकट्स वगैरह करवा दी। लेकिन वहाँ जाकर के पता चला कि जॉब भी कोई नहीं थी। जहाँ पर जॉब वीज़ा के नाम पर, जॉब परमिट के नाम पर फीस ली गई, वो सिर्फ बिजनेस के नाम पर थी, जो सिर्फ कुछ दिन के लिए लिमिटेड थी, जिसके नाम पे आप जॉब नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा और पैसे लेकर भाई कुछ ना कुछ परमिट में इशू आ गया था, वो गलती पे स्पेंड हो गई है। ऐसे कर करके लगभग 7 लाख रुपये स्कैम हो गए। तो प्लीज़ ऐसे किसी के भी झांसे में ना आए, ना ही ऑनलाइन पोर्टल्स पर कुछ ऐसा मेंशन है, या किसी को कॉल देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आपको हम जॉब लगवाएंगे, तो बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिए ऐसे नंबर्स पर। वो सिर्फ आपको स्कैम करने के लिए ही बैठे हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़े बड़े ऑफिस दिखाएंगे, कहेंगे ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन बाद में पैसा लेने के बाद कुछ भी नहीं होगा जब तक फुल प्रूफ डॉक्यूमेंटेशंस ना हो। प्लीज़ ऐसे कहीं भी अप्लाई ना कीजिए, ना ही किसी एक्स वाई जेड कंपनी पर ट्रस्ट करें। बाकी चर्चा होती रहेगी उस और भी ट्रैक।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

यानी के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी प्ले। दोस्तों, आज सिनेमा घरों में बहुत ही चर्चाएं करने वाला हूँ सिनेमा के गलियारे से कि कौन कौन सी नई कहानियां सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होने को तैयार। कुछ का होगा ओटी प्लेटफॉर्म पर आगाज, तो कहीं होंगी नई कहानियों की चर्चाएं, ट्रेलर, टीजर, नए गाने, नई जोड़ियां, हिंदी सिनेमा से साउथ इंडस्ट्री की कहानियां, तो कहीं होगा पंजाबी गानों का धमाल, तो कुछ होगा हॉलीवुड के सस्पेंस का कमाल। सिल्वर स्क्रीन से ओटी प्लेटफॉर्म तक किस्से कहानियां आप सबके लिए लेकर के आऊंगा, लेकिन सारी चर्चाएं करूंगा, उससे पहले सुना रहा कुछ बढ़िया से गाने।

0: बन्नो की सहेली से लेकर दीदी का दीवाना देवर पूरे सिनेमा की अपडेट मिलेगी ओनली इन फिल्मी फ्लेवर।
1: बंदा है ये खुद से बेगाना, अजी बंदा है ये खुद से बेगाना।
2: ए जय माता जी ने हम कहीं ने कहूँ के वाह फरे वादल फरे वायरो फरे, पण एक बार बोलिया पछी माने मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हाँ।

उसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसका रिलीजिंग का इंतजार तो 2028 तक करना होगा। चर्चाएं अभी से शुरू हो गई। द बैटमैन पार्ट टू से रॉबर्ट पैटिंसन का पहला लुक और फिल्म की नई रिलीज डेट की जानकारी सामने आ गई, जहां डायरेक्टर मैच ने इसे 30 सेकंड का कैमरा टेस्ट टीजर शेयर किया, जहां पैटिंसन नए बैट सूट में नजर आए। वीडियो की शुरुआत में बैकग्राउंड म्यूजिक और सायरन्स होते हैं, वहीं बैटमैन की पीठ दिखती है, बारिश या बर्फ जैसा माहौल, पीछे पुलिस की गाड़ियों की फ्लैशिंग लाइट्स दिखती हैं और फिर धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़कर सीधे लेंस की ओर देखता है अपना बैटमैन। जहां बात की जाए इसका स्केड्यूल 1 अक्टूबर 2027 से स्टार्ट किया जाने वाला और रिलीजिंग जो है 18 फरवरी 2028 तक की जाएगी, यानी कि इंतजार नहीं लंबा इंतजार। 2022 की पहली फिल्म के लगभग 6 साल बाद इसके सीक्वल की तैयारियां चल रही हैं और सीक्वल इतना बेहतरीन होने वाला है कि फर्स्ट लुक फुटेज इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ गया, लेकिन इंतजार भी उतना ही लंबा करना होगा। बाकी ऐसे भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: आखिर
1: इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से। खुशहाली कुमार और महेश मांजरे का स्टारों फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म दुल्हनिया ले आएगी। जी हाँ, इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर की शुरुआत शादी के मंडप से होती है, जब सब कुछ सजधज तैयारी हो रही है, रिश्तेदार आ चुके हैं, बस एक चीज गायब है, दूल्हा। कहानी एक 32 साल की लड़की पर है जिस पर शादी का, फैमिली और समाज का दबाव है और इस क्राइसिस को संभालने के लिए किराए के दूल्हे की तलाश वाला मजेदार ट्रैक शुरू हो जाता है। यहां से एक तरह का स्वयंवर स्टाइल कॉमिक चाउस बनता है। जी हाँ, ट्रेलर से साफ है कि फिल्म में शादी, प्यार, पारिवारिक रिश्ते, कॉमेडी और इमोशन का मिक्स है, यानी एक फुल ऑन फैमिली एंटरटेनमेंट कहानी। ह्यूमर्स भी होंगे इस कहानी में। जहां बात की जाए तो ये दोनों स्टार्स बेहतरीन तरीके से एक कहानी सबके सामने लेकर गया। अब देखते हैं कि जहां फिल्म की थिएटरिकल रिलीज तय की गई तब से लेकर अब तक कितना प्यार बटोर चुकी है, कितनी कमाई हुई, ये भी बताऊंगा। लेकिन सुनाता हूँ उससे पहले और कुछ खूबसूरत से गाने।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्म फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं जसन संजय, जहाँ फिल्म सिग्मा से डायरेक्टर के रूप में डेब्यू कर रहे हैं। जसन तमिल सुपरस्टार और तमिल के सीएम तलपति विजय के बेटे हैं, जिन्हें अपने दादा एस ए चंद्रशेखर की तरह पहले ही फिल्म डायरेक्शन की राह चली। फिल्म मेकिंग में फॉर्मल एजुकेशन लिया और कुछ शॉर्ट फिल्म्स के लिए और अब प्रोडक्शंस के बैनर तले फुल लेंथ फीचर सिग्मा डेब्यू कर रहे हैं। सिग्मा एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो एक हिडन ट्रेजर हंट और हाई स्टेक्स। फिल्म में संदीप किशन लीड किरदार में है और उनके साथ फरीहा, राजू सुंदरम, अनुथासन, योग, संपत राज, किरण कौंदा जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक और टाइटल पहले रिवील हो चुका और लाइका ने इसे सिग्मा नाम से अनाउंस किया, जहां इस वीकेंड यानी कि 31 जुलाई को थिएटर्स में ये कहानी रिलीज होने वाली है। देखते हैं कि थलपति के बेटे इस कहानी से क्या धमाल मचाते नजर आएंगे, जो कि ग्रेट माइलस्टोन साबित होने वाली है, ऐसा मेकर्स का कहना है। रहेगा इंतजार, बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां पर तो हम बात करते हैं इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2026 की बात की जाए तो आप मेंबर्स ऑफ फैमिली को इस साल के फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म चुना गया जी IFMM 2024 की ओपनिंग नाइट तमिल लैंग्वेज ड्रामा मेंबर्स ऑफ प्रॉब्लमैटिक फैमिली की स्क्रीनिंग जो इस साल की शुरुआत में बर्लिन इंटरनेशनल फेस्टिवल 26 में भी प्रीमियर हुई। बात करें जो कि हम इंडियन फिल्म्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है मेलबर्न में यह फिल्म अपना ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर देगी जहां ओपनिंग शो में फिल्म के डायरेक्टर आर गोनाथम और लीड एक्टर करुथरदयन भी नजर आ रही हैं। जी हां, सोलन गेस की अगर बात की जाए 13 से 23 अगस्त तक ये पूरा फेस्टिवल होने वाला है जहाँ इंडियन फिल्म फेस्टिवल में जो अगर बात की जाए रीजनल फिल्म की ओपनिंग की जा रही है जो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में फिल्म को इतना जगह से प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी चर्चा होती रही सुपर रिकॉर्ड।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है,
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

0: आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

हर बंदी के मुंह से निकले चीख, हाथ पकड़ पूरे दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी प्लेयर। मैं फिल्मी टॉनिक आरजे मौनिक। यहाँ दोस्तों बात करते हैं अब हनुमान अंश के ट्रेलर के बारे में, जहाँ इसकी कहानी और रिलीज डेट भी सबके सामने आ चुकी है। ये कहानी एक बायोग्राफी है आध्यात्मिक जो श्री नीम करोली बाबा, यानी नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा से प्रेरित है। बात की जाए तो ट्रेलर की शुरुआत 1930 के दौर के नॉर्थ इंडिया से होती है। एक एसएचओ के घर तड़के एक शख्स आकर घबरा कर कहता है साहबपुर, जिस पर एसएचओ चुटकी लेते हुए जवाब देता है सुबह सुबह नींद में हो क्या अभी तक। फिर सामने बाबा के रूप में नजर आते हैं शोभिनाव सत्या। आगे शॉट्स जंगल, गांव, मंदिर, आश्रम और भक्ति सेवा के दृश्य दिखाए गए, जहां नीम करोली बाबा का सफर और उनकी करुणा चमत्कारी प्रसंग और भक्तों का प्रभाव पर जोर दिया गया। फिल्म में शोभिनाव सत्या मुख्य भूमिका में हैं और उनके साथ विहान शैज, चंदन की आनंद, पूर्णिमा तिवारी जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं। इस वीकेंड पर यह कहानी रिलीज की जाने वाली सिनेमाघरों में देखते हैं कि ये बायोपिक, आध्यात्मिक बायोपिक क्या धमाल मचाएगी, कितना प्यार बटोरती हुई नजर आने वाली है। बाकी चर्चाएं करता हूँ, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: 69.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ फिल्मी टॉनिक आरजे मौलिक। और दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं फिल्मी गलियारे में अब वक्त हो चला है सिनेमा के कैलेंडर का। तो आज की डेट है 29 जुलाई और आज इंडस्ट्री में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे एक ऐसे स्टार का जो बॉलीवुड के सुपरस्टार जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है बॉस। एक ऐसा एक्टर जिसने रोमांस भी किया, एक्शन भी, कॉमेडी भी, इमोशनल कैरेक्टर से ऑडियंस का दिल जीता। उनकी दमदार पर्सनैलिटी, हैवी डायलॉग डिलीवरी और अलग स्टाइल ने उन्हें हर जनरेशन का फेवरेट स्टार बना दिया। जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो यहां फैंस इंडस्ट्री के स्टार्स उन्हें संजू बाबा के नाम से जानते हैं। आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं संजय दत्त, जहां इनकी सिनेमा के गलियारे से इनके फिल्मी करियर से बहुत सी चर्चाएं लेकर के आए हैं। कुछ बेस्ट कैरेक्टर्स, बेस्ट कहानियां और कितना स्ट्रगल किया इंडस्ट्री में आने से ज्यादा बहुत सारी चीजों पे जाकर के, कंट्रोवर्सी भी, खैर उस और नहीं जाता, लेकिन हाँ बहुत सी ऐसी कहानियां जिनके इनके किरदार याद किए जाते हैं। आज भी संजू बाबा को उनके कैरेक्टर्स कुछ ऐसे रहे जो फेमस रहे कि यार संजू बाबा अगर इस कैरेक्टर में ना होते तो और कोई स्टार क्या इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर पाता या नहीं। ऐसी बहुत सी चर्चाएं इनकी जिंदगी से लेकर के आऊं, लेकिन उससे पहले सुनाऊंगा कुछ और बढ़िया बढ़िया से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: भी है कोई। इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों सिनेमा के कैलेंडर में अब हम बात करते हैं संजय दत्त का फिल्मी सफर। किसी रोलर कोस्टर राइड से कब नहीं रहा। वेटरन एक्टर सुनील दत्त और नगिस के बेटे संजय ने 1981 में रॉकी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। अपनी पर्सनल लाइफ के कई उतार चढ़ाव के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल के बाद उन्होंने और मजबूत कमबैक किया, जो इसी जज्बे ने उन्हें फैंस के दिलों में एक खास जगह दी। संजय दत्त की करियर की कुछ यादगार कहानियों की अगर बात करें, साजन खलनायक, वास्तव मुन्ना भाई, MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई का कैरेक्टर उनके करियर का सबसे आइकॉनिक रोल माना जाता है। जादू की झप्पी और गांधीगिरी जैसे कॉन्सेप्ट ने सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि लोगों की सोच पर भी असर छोड़ा। संजू बाबा की जिंदगी से और भी चर्चाएं आप सभी लेकर के आऊंगा, लेकिन सुना देता हूँ उससे पहले एक और बढ़िया सा ट्रैक।
1: बाजू

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: भेजा सरकार
1: ने। थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: पीजिए सरकार।
1: फैनो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हैं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों सिनेमा के गलियारे में हम चर्चा कर रहे हैं संजय दत्त साहब की। संजय दत्त ने अपने करियर में हीरो एंटी हीरो विलन और कैरेक्टर रोल्स हर तरह के किरदार निभाए। साउथ इंडियन सिनेमा और पैन इंडिया फिल्मों में भी उन्होंने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। जीप वाइज पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड आज भी उन्हें बॉलीवुड के सबसे अलग स्टार्स में शामिल करता है। अब बताइए संजय दत्त के कौन से किरदार या कौन सी कहानी आपको ज्यादा पसंद आई, मुन्ना भाई बल्लू खलनायक से या रघु वास्तव से या फिर अमन साजन से? हमारे व्हाट्सएप नंबर 6548968969 पर बाकी ऐसी चर्चाएं करता रहूंगा, लेकिन आज नहीं, उससे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह। गुड़ी रवाते तब तो सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

बॉलीवुड में दो तरह के स्टार्स होते हैं, एक जो स्पॉटलाइट के पीछे भागते हैं और एक जो स्पॉटलाइट को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देते हैं। अक्षय खन्ना दूसरे वाले हैं। अक्षय खन्ना नाम सुनते ही याद आता है काम फेस, इंटेंस आइज और एक अलग ही एक्टिंग स्टाइल। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये कहानी है एक लेगेसी के प्रेशर की। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एक्टर अक्षय खन्ना की। विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार के बेटे होना सुनने में ग्लैमरस लगता है ना, लेकिन असल में ये एक इनविजिबल बर्डन होता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एंट्री लोगे और सुपरस्टार बन जाओगे। अक्षय का डेब्यू हुआ 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से। फिल्म फ्लॉप, हाँ पहला ही स्टेप लड़खड़ा गया। लेकिन फिर आई बॉर्डर, एक मल्टी स्टारर फिल्म जहां सनी देओल, सुनील शेट्टी जैसे नाम थे और उस भीड़ में एक काम इमोशनल सोल्जर अक्षय खन्ना। उनकी आंखों में जो इनोसेंस थी ना, उसने लोगों को नोटिस करने पर मजबूर कर दिया। वो हीरो नहीं बने थे, वो एक याद बन गए थे। और आज भी जब भी हम लोग बॉर्डर फिल्म देखते हैं तो एक अल्टीमेट एक्टर नजर आता है अक्षय खन्ना के अंदर। तो आगे कैसे वो चॉकलेट बॉय बने या फिर सीरियस एक्टर बने, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और मैं हूं

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

बॉलीवुड को कंफ्यूजन पसंद नहीं, या तो आप हीरो हो या कैरेक्टर एक्टर। पर अक्षय खन्ना और दोनों के बीच का एक अनआंसर्ड क्वेश्चन थे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार एक्टर अक्षय खन्ना की। 90s के एंड और 2000s के स्टार्ट में अक्षय ने चूज की अलग अलग स्क्रिप्ट्स। दिल चाहता है एक मॉडर्न अर्बन स्टोरी, सिड का कैरेक्टर शाय इमोशनल पेंटर टाइप। जब बाकी एक्टर्स लाउड थे, अक्षय साइलेंट थे, और वही साइलेंस सबसे लाउड फील हुआ। फिर आई ताल, जहां उन्होंने एक रिच ऑब्सेसिव लवर का रोल प्ले किया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उन्होंने टिपिकल हीरो बनने की कोशिश कभी नहीं की। नो सिक्स पैक, ना ओवर द टॉप डायलॉग्स, सिर्फ एक्टिंग। अक्षय खन्ना ने कभी हीरो बनने की एक्टिंग करी ही नहीं, उन्होंने बस एक्टिंग को हीरो बना दिया। और बीच में जब वो गायब हुए, तो सब लोगों के मन में सवाल था कि अक्षय है कहाँ, क्या वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए गए हैं। तो सवाल के पीछे का जवाब करेंगे इसके बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

हर एक्टर का एक डाउनफॉल होता है, पर कुछ लोग गिरते नहीं, बस भीड़ से बाहर निकल जाते हैं क्वाइटली। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एक्टर अक्षय खन्ना की। और अक्षय खन्ना भी ऐसे ही थे, वो भीड़ से बाहर निकल गए चुपचाप। 2000s के मिड तक अक्षय खन्ना सडनली कम दिखने लगे, ना पार्टीज, ना कॉन्ट्रोवर्सीज, ना पीआर ड्रामा, लोग बोलने लगे करियर खत्म। लेकिन सच क्या था, अक्षय खन्ना को रेस पसंद ही नहीं थी। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, आई डोंट एंजॉय द

फ्रॉम फिल्म मेकिंग एनीमोर। ये लाइन सिंपल लगती है पर बॉलीवुड के कंटेक्स्ट में ये रेबिलियन है। जहां लोग स्ट्रगल करते हैं एक चांस के लिए, वहां एक एक्टर वॉलंटेरिली पीछे हट रहा है। वो हार के नहीं गए थे, वो चूज करके चले गए थे। और फिर उसके बाद जब उनका हुआ कम बैक, तो ये बात तो शायद सभी लोग जानते हैं। तो करेंगे इनके कम बैक के बारे में भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।

जब सबको लगा कहानी खत्म हो गई, तब एक साइलेंट एंट्री हुई और सबको याद आ गया असली एक्टर किसे कहते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार एक्टर अक्षय खन्ना की। साल 2016, ढिशुम, एक छोटा सा रोल लेकिन इम्पैक्टफुल। हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की। फिर आई मूवी मॉम, श्रीदेवी के अपोजिट एक शार्प कॉप, और फिर अंधाधुन, एक नेगेटिव अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर, और अक्षय खन्ना ने स्क्रीन चुरा ली। उनकी एक्टिंग में एक अजीब सा काम मैनिस था। वो चिल्लाते नहीं पर डरा देते थे। वो कमबैक नहीं था, वो बस एक रिमाइंडर था कि मैं वापस आने वाला हूँ। और कैसे उन्होंने करी वापसी, इसके बारे में तो शायद हम सभी लोग जानते हैं, मगर और भी बातें करेंगे अक्षय खन्ना के बारे में, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, आप सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

हर एक्टर को अवार्ड्स नहीं मिलते, पर कुछ एक्टर्स को रिस्पेक्ट मिलती है और वो ज्यादा पावरफुल होती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की। आज भी अक्षय खन्ना कोई सोशल मीडिया किंग नहीं है, ना वो हेडलाइंस चेस करते हैं, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं ऑडियंस ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाती है। सेक्शन 375 उनका रोल अमेजिंग था, दृश्यम 2 हर रोल में एक मैच्योरिटी, एक कंट्रोल। उनका करियर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ज़िगज़ैग है, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन रियल है, और शायद इसीलिए वो रिलेटेबल भी है। अक्षय खन्ना सुपरस्टार नहीं बने क्योंकि वो उससे भी बड़ा बनना चाहते थे, और शायद वो बन भी गए। एक एक्टर जिसे समझने के लिए वक्त लगता है, और शायद इसी वक्त ने बना दिया उन्हें रहमान डकैत। हम सभी ने मूवी देखी है धुरंधर, और उसमें गजब की एक्टिंग करी थी अक्षय खन्ना ने, और ऐसे ही बन गए वो एक सुपरस्टार। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।
2: सड़क पे चलते समय सबसे पहले सुरक्षा के बारे में सोचें। आपका कहीं जल्दी पहुंचने से ज्यादा जरूरी है आपका घर सही सलामत पहुंचना।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

एक बात कही गई है ना कहीं, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। ये लाइन हम सबने सुनी होगी, पर ऑनेस्टली बताओ कितनी बार आपने अपनी जिंदगी में इस बात को अप्लाई किया है। कभी ना कभी हम सब एक ऐसे फेज से गुजरते हैं जहां लाइफ हमें टेस्ट करती है, और उस वक्त हम डिसाइड करते हैं गिव अप करना है या लेवल अप। मैं हूं आरजे गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, जहां बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं होता, स्टोरीज होती हैं, स्ट्रगल होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट रियल लोग होते हैं। और आज के एपिसोड में कहानी सिर्फ एक सक्सेस की नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अभी स्ट्रगल में हैं, जो सोच रहे हैं क्या मैं भी कर पाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर आज आपके पास से सब कुछ छिन जाए, सिर्फ आपकी मेहनत बचे, तो क्या आप फिर से शुरू करेंगे? क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे इंसान

की है जिसके पास कभी कुछ भी नहीं था, ना पैसे, ना सपोर्ट, ना लैंग्वेज, सिर्फ एक चीज थी, अंदर का जुनून। और वही जुनून एक दिन उसे ले गया इंडिया के सबसे पॉपुलर फूड ब्रांड में से एक तक। बट वेट, नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब आप उनका नाम सुनेंगे ना तो कहानी और थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। स्टे ट्यून्ड और आप सोचिए कि कौन है वो इंसान जो आज हजारों लोगों को रोज इंस्पिरेशन देते हैं। और हाँ, आप गेस भी कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। रेडियो महारानी इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और डीएम में जाके बताइए कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाली।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

बैक, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूं गीत। अब टाइम आ गया है उस नाम को रिवील करने का, वो नाम जो प्रूफ है कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, माइंडसेट मैटर करता है। इनका नाम है प्रेम गणपति। यस, वही प्रेम गणपति डोसा प्लाजा के फाउंडर, आज जिनके आउटलेट इंडिया से लेकर दुबई और न्यूजीलैंड तक हैं। पर एक वक्त था जब मुंबई की सड़कों पर ये इंसान अकेला बिना पैसे बिना लैंग्वेज के खड़ा था। सोचिए, 17 साल का लड़का सपने लेकर आता है मुंबई और जिस इंसान पर ट्रस्ट करके आया वो उसके 200 रुपए लूट कर चला जाता है। न घर लौटने के पैसे, न किसी को फोन करने का ऑप्शन। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते? शायद वापस चले जाते या फिर लड़ते। प्रेम ने डिसाइड किया, मैं यहीं रहूंगा और कुछ बन के दिखाऊंगा। बट कैसे, कहां से स्टार्ट किया, क्या इन्होंने कभी गिव अप का सोचा, इस सब के बारे में बात होगी। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

कभी कभी जिंदगी आपको वहां ले जाती है जहां से वापस आना ऑप्शन होता है, पर रुककर लड़ना चॉइस होती है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, मैं हूं गीत। अब तक मैंने आपको बताया है कैसे प्रेम गणपति मुंबई पहुंचे और कैसे एक झटके में उनसे सब कुछ छिन गया। अब जरा इमेजिन करिए, एक 17 साल का लड़का जिसे ना शहर की भाषा आती है, ना कोई पहचान है, ना पॉकेट में पैसे हैं, और उसी शहर में उसे डिसाइड करना है भागना है या बनना है। प्रेम जी का बचपन किसी फिल्म के स्क्रिप्ट जैसा नहीं था, बल्कि वो रियलिटी थी जिसे हम सब में से बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में 7 भाई बहनों के बीच एक बच्चा जिसे जल्दी समझ आ गया था घर चलाना है तो खुद को रोकना पड़ेगा। 10th के बाद पढ़ाई छूट गई क्योंकि ड्रीम से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी थी। चेन्नई में छोटी मोटी जॉब्स 250 रुपए महीने, और वो भी खुद के लिए नहीं घर भेज दिए जाते थे। क्या आपने भी कभी अपने सपनों को फैमिली के लिए पॉज किया है? अब यहाँ बढ़ते हैं मुंबई में और फिर वही उनकी जिंदगी, पर उसके बाद जो हुआ वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कहानी का। महीम की एक बेकरी, बर्तन धोने की जॉब, 150 रुपए महीना, लेकिन वहाँ से इनकी एक चीज बदल गई थी, माइंडसेट। प्रेम जी ने सिचुएशन को पनिशमेंट नहीं माना, उन्होंने इसे ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया। दिन में काम, रात में वहीं सोना और धीरे धीरे ऑब्जर्व करना कैसे चलता है किचन, कैसे मैनेज होते हैं कस्टमर्स और कैसे बनता है फूड बिजनेस। और इसी बीच एक चीज क्वाइटली ग्रो हो रही थी, डोसा बनाने का उनका शौक। कभी कभी हमारे पैशन हमें बचा लेते हैं जब दुनिया हमें तोड़ रही होती है। 2 साल तक छोटी छोटी जॉब, सेविंग, ऑब्जर्विंग, लर्निंग, और फिर 1992 में इन्होंने डिसाइड किया अब अपना कुछ शुरू करना है। कुछ बड़ा प्लान नहीं था, कोई इन्वेस्टर नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, बस थे कुछ बर्तन, एक चूल्हा और एक विश्वास। लेकिन क्या सिर्फ विश्वास से बिजनेस चल जाता है? जब इन्होंने पहली बार अपना ठेला लगाया तो क्या लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट किया, या फिर शुरू हुई इनकी असली स्ट्रगल? मैं बताऊंगी इस कहानी को, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हे ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

साता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास कापे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

डीनू जेम्स की आवाज में गाना और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। स्टार्टअप शुरू करना आसान है, उसे सर्वाइव कराना असली खेल है। 1992 वशी स्टेशन के बाहर एक छोटा सा ठेला, इडली डोसा और एक सपना, प्रेम गणपति ने शुरुआत कर दी थी। पर यहाँ से स्टोरी आसान नहीं हुई, बल्कि यहीं से असली गेम शुरू हुआ। इन्होंने अपने दो भाइयों को बुलाया क्योंकि उन्हें समझ आ गया था अकेले जितना कर सकता हूँ साथ में उससे ज्यादा कर सकता हूँ। लेसन फॉर यू, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो टीम सिर्फ लोग नहीं होते, एनर्जी होती है। अब बात करते हैं स्ट्रगल की। दिन भर काम, कस्टमर्स को बुलाना, क्वालिटी मेंटेन करना, और फिर भी गारंटी नहीं कि आज प्रॉफिट होगा या लॉस। लेकिन प्रेम जी ने एक स्मार्ट मूव किया। उन्होंने अपने स्टॉल को डिफरेंट बनाया। जहाँ बाकी लोग कैजुअल थे वो क्लीन थे, बाकी लोग लुंगी में थे वो पैंट शर्ट में थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डोसा नहीं बेच रहे थे, एक्सपीरियंस बेच रहे थे। और यहीं से क्राउड आने लगा, इनकम बढ़ने लगी, प्रॉफिट 20,000 मंथ तक। अब लगता है सब सही जा रहा है, पर लाइफ को ना यार ट्विस्ट देना पसंद है। स्पेशली वहीं से जहां आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं वहीं लाइफ हमें नीचे धकेलना शुरू कर देती है। म्युनिसिपल ऑफिसर्स, ठेला जब्त, फाइन भरो, फिर स्टार्ट करो, फिर जब्त, फिर फाइन। इमेजिन करो, हर बार जब आप मोमेंटम पकड़ते हो तो कोई आकर रीसेट कर देता है। तो आपसे एक और सवाल है फिर से, क्या आप ये प्रेशर हैंडल कर पाते? कई लोग यहाँ टूट जाते हैं, लेकिन प्रेम जी ने क्या किया? इन्होंने सिस्टम को फाइट नहीं किया, इन्होंने खुद को अपग्रेड किया। इन्होंने डिसाइड किया ठेला नहीं रेस्टोरेंट खोलना है। लेकिन रेस्टोरेंट खोलना मतलब बड़ा रिस्क। क्या वो रेडी थे? क्या उनके पास पैसे थे? या फिर ये डिसीजन उन्हें और नीचे ले गया? ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इस गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जिससे सीधी लाइन में नहीं मिलती वो जिगजैग होती है। वेलकम बैक बिजनेस अनप्लग्ड विद आरजे गीत। 1997 रुपए थे 50,000, एक छोटा सा स्पेस और नाम डोसा प्लाजा। प्रेम गणपति अब नेक्स्ट लेवल पर आ चुके थे, कस्टमर्स बढ़ रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट्स आने लगे थे, नेटवर्क बढ़ने लगा था और यहीं से एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। दोस्तों ने इन्हें सिखाया इंटरनेट। अब सोचो एक इंसान जो कभी लैंग्वेज स्ट्रगल कर रहा था अब इंटरनेट से रेसिपी सीख रहा है। यही डिफरेंस है लर्निंग माइंडसेट में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, डोसा को ट्विस्ट देना, फ्यूजन बनाना, चाइनीज प्लस इंडियन इज इक्वल टू न्यू कैटेगरी, अमेरिकन चॉपसी डोसा, सेजवान डोसा, पनीर चिली डोसा। लोगों को कुछ नया मिला और बिजनेस बढ़ने लगा। 2002 तक 100 प्लस वेराइटीज, टर्नओवर लाखों में पर मंथ। लेकिन हर सक्सेस के बीच एक फेलियर छुपा होता है। अब इन्होंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया। अब दो रास्ते थे, छोड़ दो या सीख लो। इन्होंने क्या किया, उसी लॉस को आइडिया बना दिया और यही एंटरप्रेन्योर्स को अलग बनाता है। फिर आया बिगेस्ट रिस्क, मॉल में आउटलेट। 3 लाख इन्वेस्ट उधार लेकर डर नहीं लगा होगा, पर रिजल्ट फर्स्ट मंथ 6 लाख टर्नओवर। और यहीं से शुरू हुआ स्केल, फ्रेंचाइजी मॉडल इंडिया, न्यूजीलैंड, दुबई, फ्रॉम स्ट्रीट टू ग्लोबल। लेकिन ये एंड नहीं है, क्योंकि असली सवाल ये है कि प्रेम जी और आगे कहां पहुंचे। और आपसे भी सवाल है, आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं? तो आगे ना सिर्फ कंक्लूजन नहीं होगा, एक पुश भी होगा आपके लिए, डेफिनेटली। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

सक्सेस स्टोरी किसी ना किसी दिन एक छोटे से डिसीजन से शुरू होती है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूं आपके साथ गीत और आज आपने सुनी कहानी प्रेम गणपति जी की। लेकिन ऑनेस्टली ये सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अभी स्ट्रगल में है, जो अभी डाउट में है, जो हर रात ये सोचता है क्या मैं कर पाऊंगा। प्रेम जी के पास क्या था? पैसा नहीं था, सपोर्ट नहीं था, कनेक्शंस नहीं थे, हंगर, कंसिस्टेंसी और एक डिसीजन, हार नहीं माननी है। और अब मैं आपसे सीधा बात करती हूँ। अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं माइक के उस साइड, क्या आप भी कुछ करना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई आइडिया है जो बस दिमाग में घूम रहा है, या आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो पर डर रहे हो नेक्स्ट स्टेप लेने से? तो आप ये सुनिए, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। ना प्रेम जी के लिए आया था, ना आपके लिए आएगा। स्टार्ट करना पड़ता है फियर के साथ, डाउट के साथ, इम्परफेक्ट होकर भी। और हाँ, ये शो सिर्फ स्टोरी सुनाने के लिए नहीं है, ये बल्कि आपके लिए है। मैं चाहती हूँ आप में से हर वो इंसान जो कुछ करना चाहता है हमें मैसेज करें, अपनी स्टोरी बताएं और अपना आइडिया भी शेयर करें, अपना स्ट्रगल भी, क्योंकि हो सकता है बिजनेस अनप्लग्ड पर कहानी प्रेम जी की नहीं, आपकी हो। और जाने से पहले बस एक लाइन, अगर शुरुआत छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंड भी छोटा होगा। ड्रीम करो, स्टार्ट करो, गिरना भी अलाउड है, बस रुकना अलाउड नहीं है। मैं हूँ गीत, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में एक और रियल स्टोरी के साथ। टिल देन कीप हसलिंग, कीप बिलीविंग और ये याद रखिए, मन के जीते जीत है।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

क्या आपने कभी नोटिस किया है जब कोई ज्यादा सुंदर लगे, ज्यादा खुश लगे या फिर ज्यादा चमकने लगे तो कोई ना कोई बोल ही देता है, अरे नजर लग जाएगी और बस एक काला टीका या तो कान के पीछे या फिर गाल पर लगा ही दिया जाता है। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंशे आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात करेंगे उस काले निशान की जो दिखने में छोटा जरूर है पर माना जाता है बहुत पावरफुल, वही नजर का टीका। कहा है काला सा निशान पर नीयत बहुत साफ। अब बात कर ही रहे हैं नजर के टीके के बारे में तो जान लेते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आखिर कहां से आया। पर इससे पहले सवाल ये है, क्या नजर सच में लगती है या सिर्फ डर की कहानी है? तो माना जाता है कि नजर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में नहीं

मिडल ईस्ट, ग्रीस, टर्की, इवन इटली, हर जगह मिलता है। कहीं ब्लू आई, कहीं ब्लैक डॉट और कहीं काजल। मतलब सीधा सा है कि इंसान हमेशा से मानता आया है कि नेगेटिव अटेंशन का असर जरूर पड़ता है। वो कहा है कि जहां तारीफ ज्यादा हो जाए वही नजर का डर पैदा होता है। पर अब सवाल ये है कि काला रंग ही क्यों? इस बारे में बात करेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या कभी सोचा है कि टीका हमेशा काला ही क्यों होता है? 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं नजर के टीके के बारे में, जान रहे हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और आखिर इसका रंग काला ही क्यों होता है। तो कहा जाता है इंडियन बिलीफ के मुताबिक काला रंग नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व करता है, इसलिए बच्चों को काला धागा, गाल पर काला टीका, कान के पीछे काला काजल लगाया जाता है। कहा जाता है कि काले रंग से ब्यूटी को थोड़ा इम्परफेक्ट बना दिया जाता है, ताकि बुरी नजर भी सोच में पड़ जाए कि कहाँ जाऊं। वो कहा है कि थोड़ी सी कमी अक्सर बड़ी बला से बचा लेती है। अब रंग की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर नजर का बच्चों के साथ क्या कनेक्शन है। तो कहा जाता है कि सबसे पहले नजर अगर किसी को लगती है तो वो है बच्चे। सोच के जरूर देखिएगा, जब भी कभी हम किसी न्यूबॉर्न बेबी को देखते हैं, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, तो बोलते हैं बड़ा ही प्यारा है, और माँ तुरंत टीका लगा देती है। ये माँ का डर नहीं, माँ की दुआ होती है। वो कहा है कि माँ का लगाया टीका दुआ बनकर साथ चलता है। लेकिन अगर बात की जाए नजर की, तो नजर ने शादी और रस्मों को भी नहीं छोड़ा। इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

वो कहा है कि जब खुशी पब्लिक हो जाए तो हिफाजत प्राइवेट रखी जाती है। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ कल्चर कारवा का आज का सफर आपको ले आया है काले टीके के कॉन्सेप्ट के पास। तो अक्सर माना जाता है अगर कोई फंक्शन है जहाँ नजर का डर सबसे ज्यादा होता है तो वो है शादी। दुल्हन को काजल, दहेज के साथ नजर उतारना, शादी के बाद नींबू मिर्ची, ये बेहद जरूरी होते हैं। लोग भले ही इसे सुपरस्टिशियस बताएं, पर असल में तो ये प्रोटेक्शन का आइडिया था। शादी के टाइम नजर लगना बेहद कॉमन है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि शादी में एक रस्म भी होती है जिसे कहा जाता है नजर उतारने की रस्में। यहाँ सिर्फ काला टीका ही नहीं बल्कि नजर उतारने का एक खास तरीका भी होता है, जैसे कहीं कहीं नमक मिर्ची घुमाना, लाल कपड़ा पहनाना, सरसों के दाने के साथ कभी पानी में फूंक मारना। लॉजिक चाहे ना मिले पर तसल्ली जरूर मिलती है। वो कहा है कि कुछ चीजें दिमाग के लिए नहीं दिल के लिए होती हैं। अब बात कर ही रहे हैं लॉजिक की तो थोड़ा साइंस भी जान ही लेते हैं। अब जब रस्मों की बात सुन ही ली है तो थोड़ा साइंस की भी सुन लेते हैं। तो कहा जाता है साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई बार बार नेगेटिव बातें सुनता है तो कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, और नजर का कॉन्सेप्ट लोगों को इमोशनली वीक बनाता है। वो कहा है कि हर बात साइंस से नहीं, कुछ बात संवेदना से समझी जाती है। और अगर बात की जाए नजर की तो नजर तब से लेकर आज तक हर जमाने में देखने को मिली, आज के जमाने में भी नजर लगती है, बस फॉर्म थोड़ा सा बदल गया है। साइंस मीडिया पर लाइक्स के थ्रू, कमेंट्स, कंपैरिजंस, ये सब नजर का मॉडर्न वर्जन आ गया है, इसलिए लोग बोलते हैं नजर से बच के। वो कहा है कि आज नजर आंखों से कम स्क्रीन से ज्यादा लगती है। नजर से जुड़े और भी फैक्ट्स हैं, बात करेंगे उनके बारे में भी, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

कल्चर कारवा सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं नजर के काले टीके के बारे में। तो कहा जाता है औरतों ने इस बिलीफ को जिंदा रखा। माँ दादी नानी उनकी बातों में डर भले ही था पर केयर उतनी ही थी। नजर का टीका उनका साइलेंट प्रोटेक्शन था। वो कहा है कि जब घर की औरतें टीका लगाती हैं तो समझ लो कि दुआ साथ भेजती हैं। अब बात यह है क्या नजर सच में होती है? तो शायद हाँ शायद नहीं, पर ये जरूर सच है कि ये किसी की परवाह का निशान होती है। वो कहा है कि नजर का टीका काला हो सकता है पर सोच हमेशा रोशन होती है। कल्चर कारवा के आज के सफर में हमने बात की एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो बहुत पुराना है लेकिन आज भी लोगों के साथ चलता है। हमारी जिंदगी का हर रोज का पहलू इसी से होकर गुजरता है। आज हमने बात की काले टीके के बारे में और जाना कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी की केयर करना एक छोटे से निशान के साथ। कल फिर मिलेंगे कल्चर कारवा के सफर में एक नई कहानी के साथ, एक नए बिलीफ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखिए जो प्यार दिल से दिया जाए उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे भाई साहब, ये बीएलओ अभी भी घर घर क्यों आ रहे हैं?
3: क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 की गणना अवधि 24 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है।
2: अच्छा, हमें क्या करना है?
3: अगर आपने अभी तक गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस जमा नहीं किया है तो अपना गणना फॉर्म सही जानकारी के साथ बीएलओ को दें या ECI नेट ऐप के माध्यम से जमा करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।
2: उसके बाद
3: 31 जुलाई को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
4: मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
3: जनहित में जारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पूरा दिन बहुत ही ज्यादा खराब गया हो मगर शाम को अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मूड अच्छा हो गया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड यही वादा लेकर मैं आप सभी के साथ आ गया हूं। आप लोगों का मूड सबसे अच्छा हो जाएगा क्योंकि गाने ऐसे चलाऊंगा एक से बढ़कर एक और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर आप सभी के साथ खूब सारी बातें होंगी मगर अभी

आपको पता है कल शाम को यानी कि मंगलवार की शाम को मौसम विभाग के हिसाब से आज पूरे दिन भर जो भी कह लो आप लोग, दिन भर बारिश होनी थी बट ऐसा नहीं हुआ। बट कोई नहीं, अब गानों की बारिश होगी, वो भी बैक टू बैक। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड वन आप सभी के साथ। कल बारिश हुई फरीदाबाद में, जगह जगह पानी भर गया, जगह जगह की वीडियोस आई और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग सब इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी इस चीज़ के अगेंस्ट। देखो हर साल वादा किया जाता है कि इस बार बारिश में पानी नहीं भरेगा, बरसात आएगी पानी चला जाएगा। ऑल दो बहुत सारी जगह से ऐसा हुआ बट कुछ जगहों पर जहाँ स्पेशली काम किया गया था वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात, और अगर फरीदाबाद में आप किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी परेशानी में हैं तो वो भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हम लोग हायर ऑफिशियल तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नंबर है मेरा 9654896896। और क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया का जो ट्रेडिशन है, जो वर्क कल्चर है या फिर कुछ भी कह लो, एक अमेरिकन लेडी आई इंडिया में, वो शॉक हो गई, कह रही है इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका के पूरी दुनिया में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। कौन सी है वो चीज़ें, वो सब भी बताऊंगा। और इसी के साथ साथ आज हफ्ते का वो वाला दिन जब मन में ये है कि अभी दो दिन और ऑफिस आना है, फिर ये और एक्साइटमेंट भी तो रहती है कि बस दो ही दिन ऑफिस आना है, तो इस चीज़ को अपने मन में रखिए और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, बातें भी होती रहेंगी, तो उन्हीं में से एक गाना चला देता हूँ अभी और वापस आएंगे फिर और ढेरों बातें करेंगे। तो ये गाना है मिक्स मैशअप आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। और कुछ

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

मैंने जस्ट अभी एक सवाल पूछा था और वो सवाल बड़ा सिंपल सा था कि व्हाट डू यू गाइस थिंक, लाइक आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हम लोग सब कुछ नॉर्मलाइज कर चुके हैं? सड़क पर गड्ढे हैं, हम लोग नॉर्मलाइज कर चुके हैं। हम बोलते हैं इस सड़क से मत जाना, सड़क पर गड्ढे, दूसरी सड़क से चले जाना। बिजली जाती है, हम लोग नॉर्मलाइज कर चुके हैं। हम लोग पड़ोसी से फ़ोन करके पूछते हैं आपके यहाँ पर बिजली आ रही है क्या? और पानी नहीं आता तो हम लोग नॉर्मलाइज कर चुके हैं, हम लोग एक टैंकर बुक करवा लेते हैं, प्राइवेट पानी मंगवा लेते हैं, है कि नहीं? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड ये जो मैंने बातें बोली, मुझे ऐसा लगता है, देखो हम सब लोग, इवन इफ यू सपोर्ट द गवर्नमेंट, इवन इफ यू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, हम सब लोग नॉर्मलाइज कर चुके हैं कुछ चीजें, जैसे कि गंदगी। अब देखो गंदगी उठाने के लिए मैं एक जगह से रोज जाता हूँ, वहां पर हर दूसरे दिन नगर निगम के कर्मचारी साफ सफाई कर रहे होते हैं, बट हर तीसरे दिन फिर से वहां पर गंदगी हो जाती है। अब देखिए नगर निगम के कर्मचारी अपना काम करके जा रहे हैं, बट हाँ वहां पर ये जो पब्लिक है वही तो गंदगी फैला रही है। एंड यहाँ पर मैं एक बात अपने लिए भी बोलना चाहूंगा, अपने लिए मीन्स एक कॉमन सिटीजन के लिए भी बोलना चाहूंगा कि हम सब लोग भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं अगर लापरवाही हो रही है तो। क्योंकि क्या आपके घर के आसपास अगर बिजली नहीं आती आप लोग कंप्लेन करते हैं कॉल करके? क्या आपके घर के आसपास अगर सड़क पर गड्ढा हो जाता है तो क्या आप लोग कॉल करके या फिर आप लोग ट्वीट करके या फिर जो भी कह लें सोशल मीडिया पर आप लोग कंप्लेन करते हैं? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो कहीं ना कहीं हम भी हिस्सेदार हैं। और बात करें अगर गंदगी की, तो वी ऑल नो फरीदाबाद में गंदगी बढ़ती जा रही है, एंड इसका मेन कारण शायद हम ही लोग हैं, क्योंकि सड़क पर जब गाड़ी चला रहे हैं, कहीं से कुछ खरीदा हम लोगों ने, गाड़ी में बैठ के खाया, और फिर उसके बाद सड़क को हम लोग डस्टबिन समझ के उसे फेंक देते हैं। तो इफ़ यू थिंक हमने नॉर्मलाइज कर दिया है तो जवाब ज़रूर दीजिएगा। नंबर है जी मेरा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन
3: ना

कल हुई थी बारिश और वो भी बहुत अच्छी वाली बारिश हुई थी दोपहर से लेके शाम तक, और उसमें बहुत ज़्यादा जगह पर पानी भर गया था। सबसे बड़ा फेमस एग्जांपल है ओल्ड अंडरपास। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। हम लोग ना बातें कर रहे थे कि नॉर्मलाइज कर चुके हैं हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, और इसी बीच ये जो विजुअल्स आए थे कल फरीदाबाद के, ओल्ड फरीदाबाद के, खासकर मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी भरा था और दोनों तरफ से पुलिस ने गेट्स लगा दिए थे एंड वहाँ पर पुलिस वाले भी मुस्तैदी से तैनात थे। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, देखो हैट्स ऑफ उन लोगों को क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोकना पड़ता है, एंड दूसरी चीज़ हम लोग नॉर्मलाइज कर चुके हैं, ये बात को हमें मानना पड़ेगा क्योंकि देखो पानी भर जाता है हम लोग बोलते चलो दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, बट क्यों हम लोग सवाल नहीं उठाते हैं कि हर साल सेम चीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं। ये आधुनिक भारत है, यह है साल 2026 का भारत, और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो वक्त आ चुका है कि हम लोग इन प्रॉब्लम्स को ना फेस करें। अब अगर इसमें एक बात करेंगे, हाँ निकासी के लिए अंडरलाइन पाइपलाइन डाली जाती है अंडरग्राउंड और बहुत सारी चीज़ें करी जाती है, स्कीम्स लेकर आई जाती है, तो हम लोग भी तो उसमें प्लास्टिक डाल डाल के उसे बंद कर देते हैं, है कि नहीं, मानो इस बात को, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी बार ऐसा करते हैं कि कचरा रोड पर फेंक देते हैं और जब बारिश के साथ वो बहकर जाता है नालियों में और वहाँ जाके वो फंस जाता है। तो हम लोगों को भी अपने आप को सुधारना पड़ेगा और साथ ही साथ क्वेश्चन करना पड़ेगा हर गवर्नमेंट अथॉरिटी से। बस इसी को अपने मन में रखिए और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए किंग की आवाज़ में एक गाना चला रहा हूँ और अगर आपके यहाँ पर बारिश हो रही है तो आप लोग ये गाना गा के मुझे बुला सकते हैं। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

दिल्ली एनसीआर का हाल कुछ ऐसा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इंद्रदेव से सवाल करना पड़ेगा कि इंद्रदेव, क्या नफरत है आपको दिल्ली एनसीआर से? क्योंकि मौसम विभाग हर दिन यही दिखा रहा है कि आज 90% बारिश होगी, कल 60% होगी, परसों 40% होगी, तो उसके अगले दिन फिर से 60% बारिश हो जाएगी। बट हो कितनी रही है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। खली बली और मल्हारी मिक्स मैश अभी गाना था, और इसी के साथ साथ पता है आप लोगों को सुबह सुबह बादल आए थे 12 बजे के आसपास, और मुझे ऐसा लग रहा था बारिश हो जाएगी। फिर उसके बाद 4 बजे के आसपास बादल आए और कहीं कहीं जगह पर छींटे भी पड़े। बट सवाल ये है कि ये मानसून चल भी रहा है या फिर नहीं, क्योंकि मानसून में कभी भी ऐसा वाला मानसून मैंने तो आज तक नहीं देखा, और आप लोगों ने देखा तो बता दीजिए। और बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि कल के दिन के लिए प्रेडिक्शन लगाए जा रहे हैं कि कल 60% चांसेस है बारिश होने के। तो मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि देखो, अगर बारिश होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो भी ठीक है, बट बारिश अगर होती है ना तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को अपने ऑफिस टाइम से निकलना पड़ेगा, और ऑफिस से वापस घर के लिए भी टाइम से निकलना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर बहुत एक और बात बोलूं तो वो ये है कि अभी ना क्या चल रहा है पता आपको, मानसून को हिंदी में क्या कहते हैं, सावन। और सावन में हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो है मक्खी मच्छर। मक्खी तो कम है, मक्खी चलो एक बार को कहते हैं गंदगी फैला सकती है, गंदगी से हाइजीन का इशू हो सकता है और थोड़ी सी तबीयत खराब कर सकती है, मगर मच्छर और भी ज़्यादा तबीयत खराब कर सकते हैं। तो सोचिए इसके बारे में। और अभी फिलहाल आप सभी रेडियो महारानी पर सुनते रहिए इस गाने को। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा।

आज ही मैं जब दोपहर में घर से बोलकर निकला कि मैं खाना खाने बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे घर वालों ने मुझे सिंपल सी एक बात बोली, बाहर का खाना मत खा, सावन का महीना चल रहा है। और फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं करा कि मैं बाहर से खाना खाऊं। फिर उसके बाद मैंने सोचा इस पर रिसर्च करी जाए कि क्यों नहीं खाना चाहिए सावन में बाहर का खाना। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड यू नो व्हाट, हर चीज़ के पीछे साइंस है, जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं या फिर जो हमारे पूर्वज कहकर गए हैं, जैसे कि सावन के टाइम में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जस्ट बिकॉज इस मौसम में सब चीज़ें ह्यूमिडिटी की वजह से जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए नॉनवेज क्यों भी मना किया जाता है कि जल्दी से जल्दी उसको कंज्यूम तो आप कर नहीं पाओगे, तो उसमें कीड़े पनप सकते हैं, बैक्टीरियाज पैदा हो सकते हैं इस मौसम में, क्योंकि उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन है ये मॉनसून। तो यही एक रीज़न था। और इसके ऊपर जब मैंने रिसर्च करी तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फरीदाबाद की सारी जनता के लिए शेयर करूँ मैं ये सारे टॉपिक्स। तो हुआ ये कि मैंने जब रिसर्च करी तो पता चला कि हाँ, मानसून के टाइम पे आप लोगों को कभी भी हरी सब्जियां नहीं खानी है, वो जो सर्दियों में खाते हैं ना पत्ते वाली सब्जियां, वो नहीं खानी है, क्योंकि फिर से वही बात, नए नए कीड़े जन्म लेते हैं और आपको पता ही है छोटे छोटे नए नए बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, प्रजनन का मौसम है उनका, और वैसे भी मच्छर मक्खी भी बढ़ रहे हैं तो वो भी गंदगी फैलाते हैं। तो इसी वजह से घर वाले भी कहते हैं कि सावन के महीने में बाहर का खाना जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, क्योंकि बाहर मक्खियाँ बहुत सारी होंगी, वो गंदगी के ऊपर बैठेंगी, फिर उसके बाद बैठेंगी आपके फेवरेट फूड के ऊपर, और फिर उसके बाद आप लोग उस खाने को अगर खाओगे तो हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो यही सारे रीजन है जो घर वाले कहते हैं कि देखो मानसून में बाहर का मत खाओ। बस इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। वापस आकर बात करते हैं उस अमेरिकन लेडी की जो इंडिया में आई और वो शॉक हो गई बहुत सारी चीज़ों को देखकर। कौन सी चीज़ें उसने देख ली जो शॉक हो गई, करेंगे इसके बारे में बात, लेकिन इस गाने

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो आशा, होगा कोई।
3: Ladies and gentlemen, you are not ready.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

क्या आप लोगों को पता है कि हम लोगों की कोई ना कोई छोटी छोटी आदतें होती हैं जो ना बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड मैं जो ये बात बोल रहा हूँ ये मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक अमेरिकन लेडी इंडिया घूमने के लिए आई और फिर उसके बाद उसने बोला कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मतलब टोटल 5 चीज़ें उसने नोटिस करी जिसने उसकी ज़िंदगी बदली। सबसे पहली चीज़ है 10 से 15 मिनट में डिलीवरी। ये चीज़ ना साल 2020 के बाद एकदम से पीक पर आ गई है। साल 2020 लॉकडाउन, सब लोग घर में बैठे थे, सबको अपने हाथों में कोई ना कोई चीज़ें चाहिए थी और वो भी इंस्टेंटली। और फिर उसके बाद एक इंसान ने आइडिया लगाया कि 15 मिनट में डिलीवरी कर देंगे हम लोग और फिर वो चीज़ वायरल हो गई। खैर ये अमेरिकन लेडी कह रही है कि देखो नो जेंडर रिवील, इंडिया में ये नहीं होता, बाहर विदेशों में होता है कि बच्चा होने से पहले जेंडर बता दिया जाता है। डॉक्टर्स बता देते हैं कि बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है, मगर इंडिया में बताया नहीं जाता। और ये सुनकर लेडी हैरान हो गई थी। और फिर उसके बाद कुछ कुछ जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे मान लेते हैं लोहड़ी है और फिर उसके बाद होलिका दहन है और अभी दिवाली के आसपास भी हम लोग रात रात तक 12-12, 1-1 बजे तक हम लोग मनाते हैं, तो ये चीज़ें देखकर भी शी वॉज लाइक हैप्पी कि भाई इंडिया में कुछ चीज़ें तो हैं जो डिफरेंट है। और उसको एक और चीज़ सुन के बहुत अचंबा हुआ, वो ये कि जो हमारे हाउस हेल्प होते हैं ना, मेड जिन्हें कहते हो आप लोग, वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बहुत ही किफ़ायती दामों पर मिल जाते हैं। कुक हो या फिर मेड हो या फिर क्लीनर हो, कोई भी हो, बहुत ही किफ़ायती दामों में मिल जाते हैं। और इसके अलावा घरों के वाटर हीटिंग सिस्टम, उनको हैरानी हुई ये देख कर के अभी भी घर के अंदर इमर्जन रॉड लगाई जा रही है। वो नहीं होता रॉड लगा देते बाल्टी के अंदर तो उसमें बीच में एक लकड़ी भी फंसाते हैं, ये देखा होगा आप लोगों ने, और फिर बोला जाता है पानी में हाथ मत डालना। वैसे मैंने डाला है खूब बार, कभी करंट नहीं लगा। खैर ये सारी चीज़ें थी जो देख कर अमेरिकन लेडी हैरान हो गई। यहाँ पर मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि वॉट डू यू थिंक, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देखने के बाद अमेरिकन क्या पूरी दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे इंडिया से, क्या चीज़ हो सकती है वो बताइएगा ज़रूर। नंबर है जी मेरा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

0: मैं डर दी रब रब कर दी वे मैं कर दी रब रब। और मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि ऐसी क्या चीज है जो अंग्रेज अगर पहचान गए, अंग्रेजों को अगर पता लग गया तो वो हैरान हो जाएंगे। तो मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग आई है, लेट्स सी हु इज इट।
1: हाय गौरव, मैं हूँ पलक सिंघल, मैं सेक्टर 29 से बात कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर फॉरेनर्स आएं और वो देखें कि हम इंडियंस लोग, अगर हमारा टीवी या टीवी का रिमोट खराब हो जाता है, कुछ भी रिमोट या टीवी ऐसी चीजें आइटम खराब हो जाते हैं, तो हम उसको ना ठोक के पीट के उस पर दो थप्पड़ लगा करके उसको ठीक कर देते हैं। एंड मजेदार बात तो यह है कि वो काम भी करने लग जाता है। तो ऐसी चीज को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज हैरान हो जाएंगे।
0: देखो ये तो बिल्कुल एकदम सही बात है कि हाँ रिमोट खराब हो जाए उसमें दो थप्पड़ मारो वो ठीक हो जाता है। और एक और रिकॉर्डिंग आई है हमारे पास, लेट्स सी हु इज दिस।
2: हेलो गौरव, मेरा नाम पार्थ खत्री है और मैं फरीदाबाद के NIT1 में रहता हूँ। और मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज जो अंग्रेज इंडिया में देखकर डर जाएंगे वो ये है कि चप्पल उल्टी पड़े होने से कलेश होता है। तो ये काफी उनके लिए एक मतलब अजीब चौंका देने वाली बात या डरावनी बात होगी। तो
0: डरावनी बात तो नहीं होगी, बट हाँ ऐसी चीजें देखने के बाद ना अंग्रेज शॉक जरूर हो जाएंगे कि घर में चप्पल उल्टी पड़ी है, कलेश हो गया। कैंची डायरेक्ट किसी के हाथ में, मतलब लड़ाई हो जाती है। ऐसे मिथ्स हमारे घरों में बचपन से चलते आ रहे हैं। मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि काला कुत्ता काट जाएगा, ये लाल कपड़े मत पहनो सांड उड़ा देगा। ऐसे आप लोगों ने भी बहुत सारे सुने होंगे बचपन से। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। और अगर आपके कोई भी दोस्त दिल्ली NCR में रहने वाले घूमने जाने की सोच रहे हैं मनाली, तो उनको मना कर दीजिए, उनको बोलिए इस गाने को एंजॉय कीजिए जो कि है दिल्ली से मनाली। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशा है। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

जस्ट इमेजिन ये प्यारा सा गाना चल रहा हो और आप लोग हो हंसी वादियों के बीच, पहाड़ों के बीच, और सोचो कितना अच्छा लगेगा ना, बादल नीचे आ रखे हैं, मगर उसी के साथ साथ डरावना तब लगेगा जब पहाड़ भी खुद नीचे आ जाए। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ये कोई मजाक नहीं है, एक्चुअली मैं ये हो रहा है पहाड़ों पर। तो सभी से बोलना चाहता हूँ जो भी लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं घूमने जाने के लिए, क्योंकि देखो अगस्त में छुट्टियाँ बहुत सारी है और वो लोग सोच रहे होंगे घूमने जाने का, तो आप लोगों से अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप लोग अभी फ़िलहाल के लिए अपने प्लान्स को पोस्टपोन कर दीजिए पहाड़ों से या फिर कहीं और चले जाइए घूमने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल में उन्होंने बोल दिया साफ साफ कि देखो अभी टूरिज़्म के लिए सही समय नहीं है। अभी इस टाइम लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बारिश हो रही है, तो लैंडस्लाइड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, और जितने भी लोग पहाड़ से नाता रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो लोग अच्छे से बता पाएंगे आप लोगों को कि हाँ अभी पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और मतलब बारिश लगातार हो रही है उसकी वजह से लैंडस्लाइड, और फिर उसके बाद अभी तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा लैंडस्लाइड अगर हो रही है ना तो जाना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। चारधाम यात्रा को भी 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, कल और आज, और अभी भी आगे आने वाले टाइम के लिए ओपन होगा अभी या नहीं होगा ये भी वक्त बताएगा। तो वक्त कुछ ऐसा कह रहा है आप लोगों को कि छुट्टियां पड़ रही है तो कहीं और घूमने का प्लान बनाइए, जैसे कि जयपुर जा सकते हैं आप लोग जैसलमेर जा सकते हैं, जोधपुर जा सकते हैं राजस्थान की अगर हम लोग बात करें, और फिर उसके बाद साउथ इंडिया भी जा सकते हैं आप लोग, बट अवॉइड कीजिएगा कि बीच वगैरह वाले एरिया में ना जाएं क्योंकि वहां पर भी मानसून की वजह से हाई टाइड्स आ रखी है। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक गाना चला रहा हूं, वापस आकर और भी ढेरों बातें होती रहेंगी मेरे दोस्त।

है फन भी है प्यार भी है गन भी है लड़ना था मन भी है मिले जे कोई चाहता है।

मोहम्मद सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

डू यू गाइस नो योगा कितना ज्यादा बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए? और इंडिया में लोग योगा को सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है. नहीं, ऐसा नहीं है. योगा करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं. स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर. मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ. मैंने बहुत बार योगा एक्सपर्ट्स से बातें करी है, मैंने बहुत बार योगा एक्सपर्ट्स की बातें आप तक पहुंचाई हैं, बट मैं आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं. लाइक आई हैव बीन डूइंग जिम फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, और उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे आई गेस. बट मैं ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन करी. फ्री थी क्योंकि हमारे जिम में ही योगा क्लासेस होती है. मैं सुबह सुबह योगा क्लास में गया एंड आई वॉज लाइक यार चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं. एंड सच में सूर्य नमस्कार करने में मेरी हालत ख़राब हो गई. लाइक 15 से 20 सूर्य नमस्कार उन्होंने हमसे करवाए एंड उसमें ही मैं पूरा पसीने पसीने हो गया था. एंड फिर उसके बाद जब स्ट्रेचिंग हुई योगा की तो मुझे पता चला कि हाँ मेरी बॉडी को कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, और ये चीज़ हम लोग इग्नोर करते आ रहे हैं. तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप

योगा जरूर कीजिए, क्योंकि कल को अगर बाय चांस भगवान ना करे ऐसा कभी हो कि अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़े, तो वो भी आपको काफी सारी एक्सरसाइजेस ऐसी बताएंगे जो कि योगा में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो भगवान ना करे कभी भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़े, बट हाँ आप योगा करना शुरू कीजिए, आप लोगों को आज से ही विजिबल चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, वापस अगर और भी ढेरों बातें होंगी, मगर उससे पहले AI की आवाज में आप सभी के लिए ये गाना।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

ये गाना सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। पता है अभी मैं रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी फरीदाबाद की पब्लिक के साथ शेयर किया जाए। बैंगलोर में एक कपल रहता है, मिलेनियल कपल है, मिलेनियल मीन्स 90s किड्स हैं और कपल हैं, बहुत टाइम से रह रहे हैं। तो उन्होंने ना 5 रूल्स बनाए अपनी लाइफ में जिसकी वजह से वो बहुत सारे पैसे सेव कर पाए हैं एंड अभी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं बैंगलोर जैसे शहर में। अब सोचिए बैंगलोर जैसे शहर जहाँ पर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर आपको 2-room सेट फरीदाबाद में बहुत ईजिली आपको 14,000 to 15,000 में मिल जाएगा, वहीं बैंगलोर में आपको 25,000 to 30,000 रुपये में मिलेगा। तो ये है फ़र्क बैंगलोर और फरीदाबाद में रहने का। तो चलिए इनकी बात करते हैं। इन्होंने 5 आदतें चेंज करी, इन्होंने 5 रूल्स बनाए अपनी लाइफ में जिन्होंने इनकी लाइफ चेंज कर दी। तो पहला रूल तो सिंपल सा था कि नो ब्रांडेड क्लोथ्स, नो कार, नो ज्वेलरी, इन्वेस्ट करेंगे घर पे, मतलब घर खरीदेंगे एक नया। तो इन्होंने कभी ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं लिए, इन्होंने गाड़ी नहीं ली, नहीं इन्होंने ज्वेलरी पे कभी भी खर्चा नहीं करा, इन्होंने सीधे सीधे एक नया घर खरीदा। और उसके अलावा छोटे छोटे ट्रिप्स नहीं मारे इन्होंने, हर समर वेकेशन में एक इंटरनेशनल हॉलीडे ट्रिप। दैट्स द पॉइंट ब्रो, मतलब ये सच में मेरा भी एक ड्रीम है कि हाँ हर साल एक ना एक नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और इसके बाद हमेशा अच्छा खाना खाओ और जिम जाओ, और या फिर जिम भी नहीं जा रहे तो वर्कआउट करो, बस ये कहना चाहूँगा। क्योंकि इससे पता क्या होता है, इससे आपकी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इफ़ यू विल स्टे हेल्दी यू विल स्टे वेल्दी। और फिर चौथा रूल इनकी लाइफ में था कि इनमें इन दोनों ने प्लान किया कि जो वाइफ हैं वो रेंट और खर्चों का देख लेंगी और जो पति हैं वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो देखेंगे, मतलब अपने जितने भी पैसे वो कमा रहे हैं तो उसका 90% हिस्सा इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। तो ये थे कुछ 5 रूल्स जो इन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए और सब कुछ बदल गया। तो चलिए इसके बारे में और भी बातें होंगी मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए एक गाना चला रहा हूँ जो कि बहुत सारी चीज़ें याद दिलाएगा आप लोगों को। तो सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके, दिस इज मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

अब एक सवाल सबके मन में यही है और वो ये है कि क्या इंडियन मेट डिपार्टमेंट सही खबर देंगे भी या फिर नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से तो रोज बारिश हो रही है फरीदाबाद में, दिल्ली एनसीआर में, बट हम सब लोग जानते हैं कि सच में बारिश नहीं हो रही है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आज पूरे दिन भर बारिश के आसार थे, मगर किसी जगह पे छींटे पड़ गए तो पड़ गए, बट ऑल ओवर फरीदाबाद कुछ भी नहीं हुआ। खैर, इसी के साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों को बोलूंगा कि इंडियन मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि आने वाले कुछ दिन थोड़े से बारिश भरे हो सकते हैं, और अगर बारिश आ गई, सोचिए जरा, अगर बारिश आ गई इनके हिसाब से, जैसे कि इन्होंने बताया कि कल दोपहर 1 बजे भी बारिश हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगी। और अगर इनका कहना सही है तो हम लोगों को इस बार अगस्त थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, मतलब थोड़ा सा भीगा भीगा अगस्त मिलेगा, और भगवान ना करे ज़्यादा तेज़ बारिश ज़्यादा देर के लिए हो, क्योंकि हम सबको पता है वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली एनसीआर में। और इसी के साथ साथ मुझे एक चीज़ याद आती है हर साल, और वो है साल 2022 का सितंबर। साल 2022 के सितंबर में इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी लगातार 3 दिन के लिए कि मैं बीके चौक से लेके NID5, अब सोचिए कितना छोटा सा डिस्टेंस है, मैं वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में मुझे करीब करीब 2 घंटे लग गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम। तो भगवान ना करे ऐसा कभी फिर से हो। बस इसी के साथ साथ ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए गाना चला रहा हूँ, वापस आकर और भी ढेरों बातें होती रहेंगी, मगर ये गाना कुछ स्पेशल है, मिक्स मैशअप है यो यो हनी सिंह और बोहिमिया का। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

स्पैम कॉल का माहौल कुछ ऐसा है कि किसी एक फोन कॉल का आप इंतजार कर रहे होगे, इतने में एक अननोन नंबर से फोन आता है। और आजकल तो एक बहुत ही डिफरेंट चीज होने लग गई है कि ट्रू कॉलर का जो नोटिफिकेशन आता है कि स्पैम कॉल है, उससे पहले ही एक ऐसा नाम लिखा हुआ आ जाता है आपके फोन में जो कि आपने सेव भी नहीं किया होता। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मेरे फोन पर एक कॉल आता है विक्रम राठौड़ का। मैं शॉक हो गया, मैंने सोचा भाई विक्रम राठौड़ मेरे तो पास कोई नंबर ही नहीं है ऐसा। और फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उठाया तो पता लगा वो टेलीमार्केटिंग कॉल था, एक कोई अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा था या फिर कोई लैब वाले का फ़ोन था मेरे पास जो कह रहे थे कि ब्लड चेकअप करा लो, बट मुझे नहीं करवाना था। बट ये जो आया ना नाम विक्रम राठौड़, मतलब ये फ़ोन के अंदर कैसे आ रहे हैं आई डोंट नो, बट ये आजकल सभी के फ़ोनों में ऐसे नाम लिखे हुए आ रहे हैं और ये इस तरह से लिखे आते हैं ना बिल्कुल कह सकते कैपिटल लेटर्स में, तो पता भी नहीं चलता कि हाँ हमने सेव कर रखा है या फिर ये कोई अननोन नंबर है। तो आप लोग भी क्या इससे परेशान है? अगर परेशान है तो ऐसे नंबर को ब्लॉक करना शुरू कर दीजिए, और नहीं तो TRAI ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिए, वहाँ पर स्पैम कॉल्स को आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। वापस आएगी गीत विदेश की बाजियां और प्यार भरी बातें भी होंगी। आज वेंसडे का दिन है, वेंसडे की शाम है कहेंगे, और दो दिन और ऑफिस जाना है बस, थर्सडे और फ्राइडे। सैटरडे संडे से छुट्टी होती ना बहुत लोगों की, अगर आपकी नहीं है तो आपका दर्द मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके ये है गाना कुफर दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ
4: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी जो गाना आपने सुना है, गाने का नाम है खत, नवजोत आहूजा की आवाज में है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो सीधा दिल के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां हम अपने सबसे सच्चे जज्ब छुपा कर रखते हैं। खत आज के दौर में शायद सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, लेकिन कभी खत लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता था, वो किसी को अपना वक्त देना होता था, अपना दिल कागज पर उतार देना होता था। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त जब बाहर की दुनिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, अंदर की दुनिया थोड़ी तेज हो जाती है, यादें, बातें और कुछ अधूरे खत सब वापस आने लगते हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां मैं बात करती हूँ उन अल्फाजों की जो कभी किसी ने लिखे थे लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए ही लिखे गए हों। तो आज का ये एहसास भी कुछ ऐसा है। क्या कभी आपने किसी के लिए कुछ लिखना चाहा है? ये सवाल है आपसे। ऐसा कुछ जो आपने कभी कहा नहीं लेकिन दिल में हमेशा रहा, एक खत जो कभी भेजा नहीं गया क्योंकि डर था कि अगर वो पढ़ लिया गया तो शायद सब बदल जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा गया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। इश्क में ना सबसे मुश्किल यही होता है कह देना, क्योंकि जो कह दिया जाता है वो कहानी बन जाता है और जो नहीं कहा जाता वो उम्र भर एहसास बनकर रह जाता है। इसीलिए शायद खतों में लिखी हुई मोहब्बत हमेशा थोड़ी ज्यादा सच्ची लगती है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, बस दिल में जो होता है वो कह देना होता है। तो आज इश्क शायराना में मैं उन्हीं एहसासों के बारे में बात करूंगी जो कहीं नहीं गए लेकिन महसूस हुए हैं। मैं हूं गीत और ये है इश्क बाजियां। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। अभी मैंने बात की थी उन खतों की जो कभी लिखे तो गए लेकिन भेजे नहीं गए, और कभी कभी खत सिर्फ कागज पर नहीं होते, वो इंसान के लहजे में होते हैं, उसकी बातों में, उसके बदले हुए अंदाज में भी छुपे होते हैं। आज की इस खामोश रात में एक गजल याद आ रही है दाग दहलवी साहब की, तो दाग दहलवी साहब की गजल के ये चार शेर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। उन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, ना था रकीब तो वो आखिर नाम किसका था। कितनी अजीब बात है ना, पहले हम किसी के हर लफ्ज में अपना नाम ढूंढते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसी के लफ्जों में किसी और का नाम दिखाई देने लगता है। खत वही होता है, कागज भी वही होता है, लेकिन एहसास बदल जाते हैं। और तब दिल पूछता है कि ये जो बदला हुआ लहजा है, ये जो नया सा अपनापन है, या फिर किसके लिए है। दाग आगे लिखते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। इश्क में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है, बदल जाना। जब कोई इंसान धीरे धीरे बदलता है और हमें पता भी होता है कि वो हमें चोट दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी से जवाब चाहते हैं, जैसे दिल को यकीन ही नहीं होता कि जिसने इतना प्यार दिया था वो इतना दर्द भी दे सकता है। और आगे कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है, ये कलाम किसका था। कभी किसी ने आपसे भी ऐसे वादे किए हैं, वो वादे जो उस वक्त बहुत सच्चे लगते थे लेकिन वक्त के साथ बस लफ्ज बनकर रह गए। इश्क में सबसे ज्यादा तकलीफ धोखा देना नहीं होता है, बल्कि भूल जाना होता है। जब सामने वाला इंसान उन बातों को ही भूल जाए जो कभी उसने बड़ी सच्चाई से कही थी। और आखिर में दाग कहते हैं, गुजर गया वो जमाना, कहूँ तो किस से कहूँ, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। यानी अब वो वक्त चला गया लेकिन दिल अभी भी उसके ख्याल में अटका हुआ है। सुबह भी वही है, शाम भी वही है, बस वो इंसान बदल गया है। और शायद यही इश्क की सबसे खामोश सच्चाई है, इंसान चला जाता है लेकिन उसका ख्याल नहीं जाता। मैं हूं गीत, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे उन्हीं अनकहे एहसासों के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और सच कहूँ तो आजकल इश्क ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है। मतलब लोग फॉरएवर बोलते हैं लेकिन इंटेंशंस टेम्पररी होते हैं। इसी आज के कंफ्यूजिंग से इश्क को बहुत पहले ही समझ लिया था जॉन एलिया साहब ने। उनकी शायरी सीधा दिल पर नहीं लगती लेकिन सीधे सच बोल देती है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है अपनी खूबसूरत सी गजल में। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हीं को लौटा रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, किसी को भूलने के लिए आप उसकी सारी मेमोरीज उसे वापस कर रहे हो। टेक्स्ट डिलीट, फोटोज डिलीट, और जो तोहफे कभी उन्होंने भेजे थे वो भी आपने उनको भेज दिए। और ऊपर से ये भी फील कराना, देखो हम कितना मैच्योर बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप टूट जाते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, नहीं तरके मोहब्बत पर वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप्स में यही तो हो रहा है, एक इंसान ऑलरेडी मूव ऑन करना चाहता है और दूसरा अभी भी लेट्स फिक्स दिस मोड में होता है। एक कन्वेंस कर रहा है और दूसरा कन्वेंस होने को तैयार भी नहीं है। और फिर वो आगे लिखते हैं, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। कितनी स्कैरी लाइन है ना ये। कभी कभी कुछ रिश्ते शुरू ही इसीलिए होते हैं ताकि एक दिन वो हमें छोड़कर जाने की आदत से खा सके। मतलब आप किसी से मिलते हो, आप उसे अटैच होते हो लेकिन, और फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस वॉज नेवर मेंट टू लास्ट, बस एक लेसन था। और जॉन ही आगे कहते हैं, तुम्हें चाहेंगे जब छिन जाओगी तुम, अभी हम तुमको अर्जा पा रहे हैं। दिस इज सो रियल। जब कोई हमारे पास होता है हम उसे बहुत लाइटली लेते हैं, सीन करके लेट रिप्लाई, बहुत हाफ एफर्ट्स होते हैं, अटेंशन डिवाइडेड होती है। और जैसे वो हमसे दूर जाता है, सडनली आई मिस यू, आई डिडंट रियलाइज योर वैल्यू। इश्क की टाइमिंग बहुत ही गड़बड़ सी है यार। और सबसे डेंजरस लाइन शायद यही है, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जान के ठुकरा रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं फिर भी हम उन्हें ही हर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? ईगो, इमेच्योरिटी, अनहील्ड इमोशंस। आजकल का इश्क ना सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, उनमें पास्ट ट्रॉमा, ओवरथिंकिंग और व्हाट इफ भी शामिल होता है। और शायद इसीलिए रिलेशनशिप्स आजकल बहुत कम चल रहे हैं और ओवरथिंकिंग ज्यादा। तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, इसके बाद लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। खतों के बारे में बात चल रही है। कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनका एहसास, उनकी याद, उनकी मौजूदगी हमारे अंदर बहुत लंबे वक्त तक रह जाती है। और शायद इसी एहसास को बहुत ही नर्म और गहराई से लिखा है गुलजार साहब ने। वो कहते हैं, खुशबू जैसे लोग मिले अफसानों में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप बिल्कुल ठीक होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी, थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं और फिर अचानक कोई पुरानी चैट, कोई पुराना फोटो या बस किसी का नाम, और वापस आप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपने बहुत मुश्किल से खुद को निकाला था। हम कहते हैं वी आर हील्ड, बट ऑल इट टेक्स इज वन मेमोरी एंड एवरीथिंग्स कम बैक। और फिर शायद शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं, चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। यहाँ एक शब्द यूज किया गया है बालिश्त। बालिश्त का मतलब होता है हाथ की फैलाव, जैसे हम अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर किसी दूरी को नापते हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ माप नहीं है, यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसने इंतजार को इतना महसूस किया है कि हर पल हर साया वो अपने हाथ से नाप रहा हो। इमेजिन करो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो और हर मिनट इतना भारी लग रहा है कि आप उसे लिटरली महसूस कर सकते हैं। आजकल हम कहते हैं यार रिप्लाई क्यों नहीं आया, लास्ट सीन कब का है, लेकिन पहले इंतजार ऐसा होता था जहां वक्त को महसूस किया जाता था, गिना नहीं जाता था। और फिर आगे गुलजार साहब ने लिखा है, जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। बहुत गहरी बात है, कभी कभी हम खुद को अपने दर्द को बार बार जीते हैं, सेम मेमोरीज, सेम कन्वर्सेशन, सेम एंडिंग, और हमें पता भी होता है कि इससे हर्ट होगा, फिर भी हम वापस वहीं जाते हैं। क्योंकि सच ये है, कभी कभी हम इंसान को नहीं उसके साथ जुड़े एहसासों को मिस करते हैं। और आखिर में गुलजार साहब कहते हैं, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। कितनी सच्ची बात है, हर कोई एक ही स्पीड से मूव ऑन नहीं करता, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से समझता है और कोई शायद कभी समझ नहीं पाता। और शायद यही प्यार की सबसे खामोश सच्चाई है, टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती, कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है और कोई बहुत पीछे रह जाता है, और बीच में रह जाती हैं कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें और कुछ अनकहे खत। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।
1: देखो

0: से तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजिया में, हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहाँ मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहां किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।

कुछ वादे सच्चे होते हैं लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है, इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
1: रेडियो महारानी 89.6 FM कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा, आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में। जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से। और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल, शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए। और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी, ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजू की दिल दिया गल्ला.

गाना बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दिया गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाएं, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

संग हूँ तेरे गाना है फिल्म जन्नत 2 से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला, और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना, कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहां एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया, और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखा ही गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता ही है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है, और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है, या क्या फीलिंग है। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहां हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है। रमेश बाबू अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहें, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाएं यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहां ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक में क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर की पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.0।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: बड़ा सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है। शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: जरा आप मुस्कुराइए, जरा आप मुस्कुराइए,
1: कबीर ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

मुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े घुमुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: थी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।
1: हिल मिल के चलना यूं ही साथी,
0: मर बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: अनुठा की मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा अच्छा।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: आहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कोई भरोसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ वो पेड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी

0: खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
1: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: Cheers! पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदारा है, ओ करम।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

सफर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: I hate water wasting रे, जा के टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 एफएम
4: कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा
1: है। अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जय श्री हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गहे, सकहि तो सब परपंच तजी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निस्सार, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कह मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या? बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, ऐ शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का, अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप, पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के, एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया, एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं, ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा आके, काहे को लंबी यात्रा करोगे? इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम, महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में, भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है, बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं,